0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ

0: CFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
3: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम

0: खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर मुख्य अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
2: विजयम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजयम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
3: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजयम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
4: इन माई ओपिनियन विजयम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंड्रम और केरला बट फॉर द होल ऑफ इंडिया। इफ इवन अ फ्रैक्शन ऑफ शिपमेंट्स प्रेजेंटली हैंडल्ड थ्रू द फॉरेन पोर्ट्स लाइक कोलंबो, जबलाली इन दुबई और सिंगापुर कुड बी ब्रॉट बैक टू विजयम, आई एम श्योर दैट वी कैन क्रिएट एनॉर्मस वैल्यू विद इन इंडिया थ्रू ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट इवन अलाइड इंडस्ट्रीज।
2: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजयम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने यह बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख

0: रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशिद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Polling begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and lone Lok Sabha seat in Assam. BJP announces names of 8 candidates from Uttar Pradesh for Rajya Sabha elections. President Draupadi Murmu to be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. And in men's cricket, first T20 international of the 5-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. Polling has begun for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and Nogaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhuran Thakam and Dharapuram assembly seats in Puducherry, for Thattan Chowri assembly seat and Rajinagar and Nondigram assembly seats in West Bengal. More from a Kolkata correspondent.
3: The by-election in Nondigram was necessitated after Chief Minister Shubhendu Adhikari, who won both Nondigram and Bhavanipur in the 2026 Assembly election, vacated the Nondigram seat and retained Bhavanipur. Similarly, the Rajinagar seat fell vacant after sitting MLA Humayun Kobir retained Nauda and resigned from Rajinagar. In Nondigram, 16 candidates are in the fray, including BJP's Hashirani Roth and Congress candidate Milon Pradhan. The Trinamool Congress has not fielded a candidate and is supporting Mr. Milon Pradhan. In Rajinagar, 14 candidates are contesting the elections. Among the prominent candidates are Shakar of Sarkar of the BJP, Gulab Nobi Azad of Am Janata Unnayan Party, Rabiul Alam Chaudhary of the Mamata All India Trinamool Congress and Mohammad Abdullah Kafi of the Congress. Shandipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
2: The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the names of 8 candidates for the upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Ojha, Prakash Pal, Vidyasagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar. The names were approved by the BJP Central Election Committee. Today is the last day for filing nominations for the biennial elections. Polling

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: गुड मॉर्निंग मुंबई, और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल, और एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 8:41 हो गए हैं दोस्तों, और कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ जिसका नाम है मस्त मुंबई। तो चलिए बिना किसी देर के आगाज़ करते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम का इस खूबसूरत ट्रैक के साथ।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
2: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz, म्यूजिकली योर्स।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में अभी आपने ये खूबसूरत गीत सुना जिसे हमने लिया था फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। 8:51 हो गए हैं और मस्त मुंबई कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे दोस्त रेहान। जैसा कि आप जानते हैं आज है 6 अक्टूबर और आज के इस कार्यक्रम में यानी कि कल, आज और कल जो मस्त मुंबई कार्यक्रम का एक सेगमेंट होता है मंगलवार को, और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं इतिहास के पन्नों की और इतिहास के पन्नों से जुड़े कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की। तो इतिहास के दिन की अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। आज ही के दिन कई महान हस्तियों का जन्म हुआ और कई चर्चित व्यक्तित्वों के निधन का आज का दिन यानी कि 6 अक्टूबर गवाह रहा। तो सबसे पहले बात साल 1862 की। इसी दौर में भारत में जो है भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC लागू हुई थी, और लंबे समय तक भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था का आधार रही IPC ने अपराध और उनकी सजा से जुड़े प्रावधानों को एक कानूनी ढांचे में रखा। भारतीय कानून के इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
3: तो दोस्तों मस्त मुंबई कार्यक्रम में आप एंजॉय कर रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। और आज बातें हो रही है, जैसा कि आप जानते हैं आज है मंगलवार और कल, आज और कल के इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं इतिहास की। जी हाँ, इतिहास में घटित हुई कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, वो हैं पंकज महोड़ और इसके अलावा शुभदा जी जुड़ी हुई हैं अंधेरी से और प्रमोद चिंचोलकर जुड़े हुए हैं और सांता क्रूज से सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, महेश भटकर और वासी देवन बदलापुर से, फिरोज सिगनपुरिया और रजनीकांत पाटिल वाधवन उल्लासनगर से, कल्पना राजू और इसके अलावा वैदेही जी और दीपा पालकर, विश्वास चांदोलकर और यशवंत आडमुड़े इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, विक्रम आठवले और इसके अलावा कई सारे ऐसे श्रोता हैं जो इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और वीरेंद्र घाटूल अकोला से इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और इसके अलावा देश के कई हिस्सों से जो है इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं लोग। लगातार मैसेज हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर म्यूजिकली योर्स। और अगर हम बात करें आज के इतिहास की, यानी कि आज ही के दिन हमने इससे पहले आईपीसी की बात की और अब बात कर रहे हैं भारतीय न्याय व्यवस्था की। साल 1989 में न्यायमूर्ति एम फातिमा वीपी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में आज ही के दिन कार्यभार संभाला था। भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी के लिहाज से ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। फातिमा बीवी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई राह खोल दी। और अब सुनते हैं कुमार सानू और सारिका कपूर की खूबसूरत आवाजों में ये बेहतरीन गीत।

फिल्म का नाम था हाँ मैंने भी प्यार किया। कुमार सानू और सारिका कपूर के अलावा साथियों की आवाज़ें थीं, नदीम श्रवण का संगीत था और समीर के लिखे बोल। सुबह के 9:09 हो गए हैं दोस्तों और मस्त मुंबई कार्यक्रम आप इंजॉय कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर 107.1 मेगाहर्ट्ज़ में। उसके लिए और आपके साथ है इस वक्त आपका आरजी दोस्त रेहान। थोड़ी देर के लिए आपको 1927 में ले चलते हैं जहां 6 अक्टूबर यानी आज ही के दिन दुनिया ने सिनेमा की दुनिया में एक नया दौर देखा था। इसी दिन द जैज सिंगर रिलीज हुई थी और इसे दुनिया की पहली बोलती और संगीत से सजी फीचर फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म के साथ ही फिल्मों में आवाज़ का दौर तेजी से आगे बढ़ा और सिनेमा देखने का अनुभव ही बदल गया।

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

पत्ता पत्ता जान रहा है, एक तू ही न जाने हाल मेरा। कुमार के द्वारा लिखा हुआ गीत फिल्म असर से आपने सुना सोनू निगम और प्रकृति कक्कर की आवाज़ें। हम बात कर रहे हैं आज मस्त मुंबई में कल, आज और कल की, और इतिहास से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। अगर आज ही के दिन यानी कि 1949 की बात करें तो 1949 में 6 अक्टूबर के दिन भारत की सैन्य शिक्षा के लिए बेहद ख़ास रहा है, क्योंकि इसी दिन उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुणे के खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी यानी कि NDA की आधारशिला रखी थी, और आगे चलकर NDA देश के तीनों सेनाओं के लिए अधिकारियों को तैयार करने वाली एक प्रतिष्ठित जो है संस्था बन गई और पूरे विश्व में इसका नाम है।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

अरनान सामी की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत आपने साथिया से सुना। 9:29 हो गए हैं दोस्तों और आप एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। और अगर हम आज ही के दिन कुछ बड़ी इतिहास की घटनाओं की बात करें तो 6 अक्टूबर 1957 को एक बड़ी घटना हुई थी और इसी दिन सोवियत संघ ने नोया जेमाल्या क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया और शीत युद्ध के दौरान दुनिया की महाशक्तियों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ तेज हो रही थी और इसी तरह के परीक्षण उस वैश्विक तनाव की तस्वीर जो है पेश कर रहे थे। और 6 अक्टूबर 1981 को मिस्र में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसी दिन तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादात की जो है सैन्य परेड के दौरान जो है हत्या कर दी गई और ये हमला उस समय हुआ था जब सादात सैन्य परेड देख रहे थे। मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति की हत्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास की बड़ी घटनाओं में दर्ज हुई थी। फिलहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मैं उसके लिए होर्स और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। उम्मीद है मस्त मुंबई कार्यक्रम आप जरूर इंजॉय कर रहे होंगे। आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये अगला गीत, फिल्म का नाम साथिया।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़। फिल्म का नाम दिल है कि मानता नहीं। नदीम श्रवण ने संगीत दिया और वो लिखे समीर ने। 9:41 और आप सुन रहे मस्त मुंबई कार्यक्रम आरजे रेहान के साथ। और अब बात उन चर्चित व्यक्तित्वों की जिन्होंने 6 अक्टूबर को दुनिया को अलविदा कहा। आज ही के दिन 1961 की अगर हम बात करें, 6 अक्टूबर को सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय का निधन हुआ। 1974 में आज ही के दिन भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और राष्ट्रवादी नेता वी के कृष्ण मेमन का निधन हुआ। और आज ही के दिन 2021 में लोकप्रिय अभिनेता अरविंद त्रिवेदी ने अंतिम सांस ली। अरविंद त्रिवेदी को खास तौर पर रामानंद सागर की धारावाहिक रामायण में निभाए गए रावण के किरदार के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। आइए कार्यक्रम के इस मोड़ पर सुनते हैं केके की आवाज में ये खूबसूरत ट्रैक।

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना।
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
2: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

अनुराधा पौडवाल और मनोहर उदास को आपने सुना फिल्म सड़क में, और इस गीत को लिखा समीर ने। और मस्त मुंबई कार्यक्रम के आखिरी मरहले में हम बात करते हैं आज दुनिया और भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस जो है मनाए जाते हैं। आज है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, यानी कि इसके जरिए सेरेब्रल पाल्सी यानी कि मस्तिष्क पक्षाघात से प्रभावित लोगों के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों एवं समर्थन करने को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। वहीं खाने पीने के शौकीनों के लिए 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय टैको दिवस और राष्ट्रीय नूडल दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इसके अलावा बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। इसके तहत बच्चों और किशोरों को पेट के कीड़ों से मुक्ति के लिए कृमिनाशक दवा दी जाती है। इसका उद्देश्य बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाना और उनके बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण को सुनिश्चित करना।

तो आप यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। ठीक 10 बजे आप सुन पाएंगे प्रमुख समाचार और उसके बाद भी एफएम रेनबो पर मनोरंजन का और ज्ञानवर्धक जो बातें होती हैं उसका सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल।

सुबह के 9:58 हो गए हैं दोस्तों, और मस्त मुंबई कार्यक्रम यहीं अब समाप्त हो जाता है। और हमारे साथ जो श्रोता बने हुए हैं वो लगातार यूं ही बने रहिए। आपसे हम अपील करते हैं, ज़िला खरगोन सनावादी एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बोडाना के अलावा, ये इन्होंने मैसेज किया हमें, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप। इसके अलावा ढेर सारे हमारे श्रोता, इसमें दीपा पालकर, पंकज महोड़, वैदेही जी और दूसरे जो श्रोता हमें लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप यूं ही एंजॉय करते रहिए आकाशवाणी मुंबई का जो रेनबो का ये प्रोग्राम है मस्त मुंबई। फिलहाल यहीं खत्म होता है, 10:02 से शुरू होगा कार्यक्रम नमस्ते भारत। सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों, और आगे बढ़ें इससे पहले एक नज़र प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन के बीच कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दीक्षांत समारोह में 240 विद्यार्थियों को PhD की डिग्री दी जाएगी, जबकि 3 शैक्षणिक सत्रों के लिए 60 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे। अब बात मुंबई की। मुंबई के वानगंगा झील से जो खबर आई, महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने प्रदूषित जल के कारण मछलियों के मरने की खबरों के बाद वाकेश्वर स्थित वानगंगा झील का निरीक्षण किया। उन्होंने झील और जलीय जीवन को बचाने के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका और नागरिकों से मिलकर काम करने की अपील की। श्री लोढ़ा ने पितृ पक्ष के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री झील में डालने से रोकने के लिए नगर निगम अधिकारियों को निर्देश भी दिए। और बात खेल जगत की। फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में भारत का सामना आज उरुग्वे से होगा। मुकाबला साल्ट लेक के युवा भारती क्रीडांगन में खेला जाएगा। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: तो 10:02 हो गए हैं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकली योर्स, और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। और ये समय है नमस्ते भारत का, और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं कई जो है विषयों की। और आज का जो विषय लेकर मैं आया हूँ वो है चुनौती और सफलता, और इसके तहत हम बात करेंगे आज अभिनेता विनोद खन्ना की। लेकिन उससे पहले सुनते हैं जुबिन नौटियाल और पलक मुच्छल की आवाज़ों में ये खूबसूरत ट्रैक।

सुबह के 10:13 हो गए हैं दोस्तों, और अभी आपने दिल चाहता है फिल्म का यह गीत के शान और शंकर महादेवन की आवाज़ों में सुना। इसे लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत शंकर एहसान लॉय का था, और ये गाना बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ गाना है। जब भी हम सुनते हैं एक नया जो है जोश हमारे अंदर पैदा होता है। और उससे पहले आपने राजेश रोशन के संगीत से सजा हुआ गीत सुना था, जिसे लिखा था नासिर फराज ने और जुबिन नोटियाल और पलक मुच्छल की आवाज़ें थी। फिल्म का नाम था काबिल। हम आज 6 अक्टूबर की बात जब करते हैं तो आज ही 6 अक्टूबर के दिन एक ऐसे अभिनेता का जन्मदिन भी है, या यूं कहें कि बर्थ एनिवर्सरी है। उस सितारे की कहानी जिसकी शख्सियत में रौब भी था, रोमांस भी था और अभिनय में एक ठहराव भी था। हम बात कर रहे हैं अभिनेता विनोद खन्ना की। जी हाँ, 6 अक्टूबर 1946 को जन्मे विनोद खन्ना भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनके किरदार और उनके गानों से जुड़ी यादें आज भी

0: लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर आइए उस अभिनेता को चंद नगमों के जरिए याद करते हैं जिसने पर्दे पर खलनायक से लेकर नायक तक का सफर तय किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। पहचान के साथ साथ अगर हम विनोद खन्ना की बात करें तो हिंदी सिनेमा में कदम रखने की शुरुआत उन्होंने नायक से नहीं बल्कि खलनायक से की और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी थी कि देखते ही देखते वह दर्शकों के पसंदीदा सितारों में शामिल हो गए। विनोद खन्ना की हम बात आगे भी करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
1: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
2: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
1: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
2: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन बनाए समृद्ध।
0: तो छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। हम बात कर रहे थे अभिनेता विनोद खन्ना की। लंबा कद, दमदार आवाज और शानदार व्यक्तित्व ने उन्हें पर्दे पर अलग पहचान दी थी। आगे चलकर उन्होंने साबित किया वह सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। सुनते हैं उन्हीं की एक फिल्म हाथ की सफाई का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz musically yours. Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: हाथ की सफाई. अभी आपने इस फिल्म का यह गीत सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में. बात अगर विनोद खन्ना के शुरुआती दौर की करें तो उन्होंने मन का मीत के ज़रिए जो है अपने करियर की शुरुआत की थी और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर 1968 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें विनोद खन्ना का परफॉर्मेंस जो है लोगों ने नोटिस किया और हालांकि एक सपोर्टिंग रोल में वो नजर आए थे. और उसके बाद उन्हें 1970 में बड़ा ब्रेक थ्रू मिला राजेश खन्ना के साथ, फिल्म थी सच्चा झूठा. और उसके बाद आन मिलो सजना और मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम में भी नजर आए थे. और ये सभी फिल्में सुपर डुपर हिट फिल्में थीं, लेकिन विनोद खन्ना जो है छोटे छोटे किरदार में नजर आए थे. और इसके बाद गुलजार ने 1971 में फिल्म जब रिलीज़ हुई उनकी मेरे अपने, इस फिल्म में जो है विनोद खन्ना एक लीडिंग रोल में थे. हालांकि उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए उनका जो अभिनय था उसका दायरा बढ़ा और लोगों ने नोटिस किया विनोद खन्ना को. विनोद खन्ना को सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक गंभीर और दमदार अभिनेता के रूप में इस फिल्म ने स्थापित किया. फिल्म की कहानी में कई किरदार थे, लेकिन विनोद खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. और यही वो दौर था जब उन्होंने साबित करना शुरू किया कि वो पर्दे पर दिखने वाले एक अभिनेता नहीं बल्कि किरदार में जान डाल देने वाले एक एक्टर हैं. और उसके बाद मेरे अपने के बाद राज खोसला की फिल्म मेरा गांव मेरा देश, और जिसमें धर्मेंद्र और आशा पारेख भी थे, उसके बाद दो यार और गुलजार की फिर अचानक 1973 में रिलीज़ हुई और हाथ की सफाई 1974 में रिलीज़ हुई प्रकाश मेहरा की. और इन फिल्मों की कामयाबी ने विनोद खन्ना को शोहरत के मुकाम पर पहुंचा दिया.

0: अभी आपने ये बहुत ही खूबसूरत गीत सुना अमर अकबर एंथोनी से, मुकेश मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत, और नमस्ते भारत में चुनौती और सफलता में हम बात कर रहे हैं अभिनेता विनोद खन्ना की, क्योंकि विनोद खन्ना की आज है जयंती। जी हाँ, जन्मदिन है विनोद खन्ना की, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चुनौती और सफलता सिर्फ और सिर्फ आरजे रेहान के साथ।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
2: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
3: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
3: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।

कुर्बानी फिल्म का ये गीत अभी आपने कंचन, मनहर और आनंद की आवाज़ों में सुना। बहुत ही बेहतरीन फिल्म अपने ज़माने की। हम जब भी बात विनोद खन्ना की करते हैं तो उन्होंने अपनी शुरुआत जो है खलनायक से की थी, नेगेटिव रोल से किया था। फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश और इसमें उन्होंने खतरनाक डकैत जब्बर सिंह का किरदार निभाया था। इस फिल्म में हालांकि धर्मेंद्र और आशा पारेख थी लेकिन विनोद खन्ना की अदायगी लोगों के दिलों में बस गई थी। 1973 में इसी तरह की फिल्म आई अचानक और उसके बाद फिल्म जो है यह फिल्म बेहद जटिल और भावात्मक भूमिका को लेकर विनोद खन्ना ने जिस गंभीरता से इस फिल्म में अपने रोल को निभाया वो उनकी अभिनय क्षमता का एक और पहलू जो है वो सामने रखता है। फिलहाल यहाँ सुनते हैं विनोद खन्ना की एक और फिल्म आपकी खातिर का गीत बपिलहरी और साथियों की आवाज़ों में।

10:46 हो गए हैं दोस्तों, और थोड़ा सा वक्त और बचा है, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं चंद और ख़ूबसूरत नगमों के साथ। विनोद खन्ना की बहुत कम समय में बात नहीं हो पाती है, और इसके बारे में विनोद खन्ना की ज़िंदगी और उनके सफ़र के बारे में फिर कभी आपसे डिटेल में बातें करूँगा, लेकिन फ़िलहाल चंद गीत आपके लिए मैं छोड़ जाता हूँ इस वक्त, और इन्जॉय करिए, यूँ ही सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, और अपने दोस्त रेहान को दीजिए अनुमति, फिर किसी दिन आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर जाएंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट स्पोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट स्पोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। और समाचार में आगे, कल शाम मुंबई के साइन में बेस्ट बस डिपो में भीषण आग लग गई जिसमें 12 नई बसें जलकर खाक हो गईं। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां और अन्य अग्निशमन वाहन मौके पर भेजे गए। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और समाचार के अंत में क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मैच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी पर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। शर्मीन संग शामिल हो चुके हैं आप। ब्रेक फ्री ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गई हूं मैं, और आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देखिए, आज के डिजिटल ज़माने में टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है, ये बात तो सच है, लेकिन इसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर स्कैम्स का रिस्क भी बढ़ गया है। कभी फेक कॉल्स, कभी सस्पिशियस लिंक्स, कभी ओटीपी के नाम पर फ्रॉड, और एक छोटी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें बल्कि उसका सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज़ भी समझें। इसी अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, एडिशनल डायरेक्टर जनरल टेलीकॉम मोहम्मद जफर इकबाल जी, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से डायरेक्टर अरविंद कुमार सिंह जी। सर, मैं पहले तो आप दोनों को वेलकम करती हूँ एफएम रेनबो के स्टूडियोज में।
2: धन्यवाद शर्मीन, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सुनने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार।
3: धन्यवाद, और आप को भी और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसके ऊपर विचार प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे इससे बचें।
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं हमारे लिसनर्स को भी बता दूं कि अगर आपको भी इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है, अगर ऑनलाइन फ्रॉड, सस्पिशियस कॉल्स, सिम मिसयूज से जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके वो सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार बता दूँ, 8657661071 8657661071। तो हमारे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सर इकबाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये अवेयरनेस का एक बहुत ही अहम हथियार हम कह सकते हैं लोगों के पास दिया गया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और वो है संचार साथी। तो मैं चाहती हूँ कि आप संचार साथी के बारे में पहले तो हमारे लिसनर्स को बताएं।
2: धन्यवाद शर्मीन। संचार साथी हमारा एक हमारे संचार मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, एक नागरिक सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी ही शानदार पहल है, और इसके तहत हमारी भारत सरकार की संचार मंत्रालय ने एक वेबसाइट डिज़ाइन कराई है, और साथ ही एक इसका ऐप भी डेवलप कराया है जिसका नाम संचार साथी है। तो आप जब संचार

0: साथी ऐप को डाउनलोड करेंगे और या संचार साथी की वेबसाइट पे जाएंगे तो फिर आपको इसमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आपको ये पता करना हो कि आपका मोबाइल जेन्युइन है कि नहीं, वो ग्रे मार्केट का तो नहीं है, या आपके नाम से एक से ज़्यादा फ़ोन कोई दूसरा तो नहीं यूज़ कर रहा है, या और भी आगे जब आप प्रोग्राम में बढ़ेंगे तो हम इसमें और भी इसके डिटेल्स बताएंगे।
1: जी जी, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो संचार साथी ऐप है ये नागरिकों के लिए निशुल्क है?
0: जी हाँ, बिल्कुल निशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं देना होता। और इसके साथ ही इसकी एक हेल्पलाइन भी मौजूद है जो 1930 अपने मोबाइल से आप डायरेक्टली कॉल करके भी इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं।
1: 1930 जी, एक बार आपको फिर से बता दें लिसनर्स, 1930 ये नंबर है, इस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और आगे हम कई सारे क्वेश्चंस जो है हम सर इकबाल से पूछना चाहेंगे इस ऐप को लेकर, संचार साथी ऐप को लेकर, लेकिन अभी के लिए वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आए आपको सुनाते हैं के की आवाज में ये अगला गाना, न्यूयॉर्क इस फिल्म से संदीप श्रीवास्तव ने इसको लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन है जुनून। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: 1.1 FM रेनबो शर्मीन संग शामिल हैं आप और आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान भी शामिल हैं और वो हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल टेलीकॉम मोहम्मद जफर इकबाल जी और हम आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर सर और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हम संचार साथी ऐप की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि ये क्या होता है, ये हमारे आम नागरिकों के लिए निशुल्क भी है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नागरिक संचार साथी पर धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं?
1: इसको दो तरह से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एक तो हमारा संचार साथी ऐप जो एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर दोनों पे उपलब्ध है, उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं और दूसरा sancharsathi.gov.in जो वेबसाइट है उसके थ्रू कर सकते हैं। जब आप किस दोनों ऐप में या वेबसाइट के थ्रू जाएंगे तो आपको संदिग्ध धोखाधड़ी रिपोर्ट करें करके एक ऑप्शन नज़र आएगा। उस ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आगे आपको ऑप्शंस मिलते जाएंगे कि आपके साथ जिस तरह की भी आपके साथ दिक्कत हुई हो, जैसे किसी ने इम्पर्सनेशन किया हो या वित्तीय धोखाधड़ी की हो या किसी ने कोई किसी ने बैंक है, बिजली है, गैस है, इससे रिलेटेड इम्पर्सनेट करके बताया हो कि हम आपके गैस कनेक्शन का KYC कराना चाहते हैं, तो इस तरह के कंप्लेंट जो आए तो उसको आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं।
0: जी जी। और जैसे कि संचार साथी ऐप है उस पर जब हम देखते हैं तो एक ऑप्शन हमें ये भी दिखाई देता है चक्षु संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट, तो मुझे जानना है और हमारे लिसनर्स को भी जानना होगा कि ये सुविधा क्या है, इसके बारे में बताएं।
1: जो मैंने आपको इससे पहले बात बताई उसी का एक जनता को आसानी से समझ में आ सके इसके लिए इस सुविधा का नाम ही चक्षु रख दिया गया है।
0: अच्छा।
1: तो चक्षु भी लिखा हुआ है उस जगह पर और ये भी लिखा हुआ है कि संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट आप दर्ज कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: तो बस ये दोनों चीजें एक ही हैं।
0: मतलब ये ऑप्शन उसी में आपने अपनी कंप्लेंट डाली है।
1: ठीक
0: है, ठीक है। हमारे लिसनर्स को इस इंटरव्यू से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो रही होगी ये हम उम्मीद करते हैं और आपके मैसेजेस भी हमें यही बता रहे हैं। तो हम सर इकबाल से और भी जानकारियां हासिल करेंगे ये संचार साथी ऐप के बारे में। और एक चीज मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि संचार साथी पर अपने खोए हुए या चोरी हुए हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने की सुविधा क्या है, क्योंकि देखें आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है और मोबाइल्स की चोरियां हो जाती हैं और उसके बाद उसमें का डेटा सेफ नहीं रहता है और उसके बाद कई सारे उस फ़ोन को लेकर क्राइम्स होते हैं और जो ओरिजिनल उसका ओनर होता है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो आप मुझे बताएं कि संचार साथी पर अपने खोए हुए चोरी हुए हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने की सुविधा कैसी है, क्या है?
1: शर्मीन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि संदिग्ध धोखाधड़ी के लिए जो टैब है उसी के साथ बगल में एक आपके पास दूसरा टैब है जो उस तरह से लिखा हुआ है अपने खोए चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करें।
0: जी।
1: जब आप उस टैब को सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने चोरी के हुए या खोए हुए मोबाइल की डिटेल्स इसमें भर सकते हैं।
0: बिल्कुल जी।
1: इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो आप मोबाइल जिसके बारे में डिटेल्स इस ऐप में भर रहे हैं या वेबसाइट पे डिटेल्स भर रहे हैं तो उसका एक IMEI नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर उसको कहते हैं। ये यूनिक होता है हर मोबाइल का, पूरे वर्ल्ड में एक ही नंबर होता है, इसी से हम लोग ट्रेस करते हैं उस मोबाइल को।
0: अच्छा।
1: तो वो IMEI नंबर आपको डालना होता है और साथ में जो मोबाइल आपने ख़रीदा है उसकी इनवॉइस भी आपको डालनी होती है, जो इसलिए ज़रूरी होती है ताकि उस मोबाइल की ओनरशिप हम इंश्योर कर सकें कि ये मोबाइल आपने ही ख़रीदा है, वरना आपके IMEI को लेके कोई दूसरा आदमी भी उसको ब्लॉक करा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें दो चीज़ें डालनी होती हैं और बाकी नाम, एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें और एक छोटी सी एक EFIR भी डालनी होती है।
0: अच्छा।
1: तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप डाल देते हैं तो फिर आपकी ये रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लॉस्ट या स्टोलन मोबाइल है पूरे इंडिया में कहीं भी अगर कोई चोर ऑन करेगा अच्छा। तो हमारा सिस्टम उसको पकड़ लेता है और फिर उसको ट्रैक करके फिर वो जो कंसर्न थाना होता है वहां तक उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और फिर वो उसको वहां डिपॉजिट करा करके फिर जहां रिपोर्ट दर्ज हुई है उस थाने में वापस मंगवा देते हैं। ये सिस्टम है।
0: क्या बात है। इसीलिए हमारे लिसनर्स ये भी ध्यान रखें कि जो

0: आपने फोन बाय किया है उसका इनवॉइस संभाल कर रखिएगा, है ना, क्योंकि जितना आज कल आपका फोन स्मार्ट हो रहा है, आपको भी ये जरूरी है कि आप भी स्मार्ट हो जाएं। हम दोबारा लौटेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं, लेकिन एक छोटा सा स्पॉट प्ले करेंगे, उसके बाद एक गाना आएगा और फिर से हम अपनी बातचीत, आपके क्वेश्चंस, क्यूरीज, सारा कुछ आज हम सर इकबाल से पूछ कर ही जाएंगे। काफी वक्त है हमारे पास, लेकिन अभी के लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 एफएम रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
2: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
3: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
2: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि,
3: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
1: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

0: दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है, लेकिन यहाँ ऑफ एयर भी मेरे अपने इतने सारे सवाल हैं और सर इकबाल जो हैं वो बहुत बहुत ही पेशेंस के साथ उनको सुन रहे हैं और आंसर कर रहे हैं. तो जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो मैंने ऑफ एयर भी बात की है इनसे, हम सारे क्वेश्चंस इनसे पूछेंगे. लेकिन एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल टेलीकॉम मोहम्मद जफर इकबाल का. हेलो सर, वेलकम.
1: थैंक यू.
0: और जी सर, इतनी हमारे लिसनर्स भी क्वेश्चंस कर रहे हैं और बता रहे हैं, उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं कि बहुत ही जो है वो काम की और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं. अब मुझे पूछना है सर कि दूरसंचार साथी पर अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन जाने, ये जो सुविधा बताई गई है वो क्या है?
1: देखिए, ये तकरीबन 30 साल से भारत में मोबाइल सर्विसेज काम कर रही हैं
0: जी.
1: और ऐसा भी होता है कि आपने कभी कनेक्शन लिया और आप भूल जाते हैं और फिर वो कनेक्शन मिसयूज हो सकता है, कोई दूसरा आदमी आपके नाम से कनेक्शन ले करके और कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी कर देता है या एंटी सोशल एक्टिविटी कर देता है. तो चूंकि फ़ोन आपके नाम से है तो जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उसको ट्रैक करती हैं तो वो आप तक पहुंच जाती हैं, जबकि वो सिम आपके हाथ में नहीं होता
0: है.
1: तो इसमें इस परेशानी को बहुत अच्छे तरीके से संचार साथी ने हल किया है. इसमें जब आप इस टाइप को यूज़ करते हैं कि आपके नाम के कितने मोबाइल पूरे इंडिया में किसी ऑपरेटर के थ्रू काम कर रहे हैं, जब इस टाइप को सेलेक्ट करते हैं आप और अपना जो पर्सनल मोबाइल नंबर है उसको डालते हैं, उस पर एक OTP आता है. तो हमारा सिस्टम संचार साथी का आपका नाम और एड्रेस सिस्टम से उठा लेता है और उसके बाद पूरे देश में जितने भी उस नाम और एड्रेस पे फोन नंबर होते हैं वो सब वो डिस्प्ले कर देता है. अच्छा, एक ही बार में. मान लीजिए कि आपने अपने नाम से 4 कनेक्शन लिए हैं, आपने अपनी मिसेस के नाम से, अपने बेटे के नाम से कनेक्शन लिया है खुद और फिर उनको दे दिया है, तो आपको 3 नंबर दिखेंगे उसमें. हो सकता है उसमें 2 नंबर और दिख जाएं आपको, तो वो आपके नंबर नहीं होंगे. तो आप उसको टिक कर देंगे नॉट माई नंबर, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर आपके नहीं है और फिर उसको हम लोग बंद करा देंगे. तो इस तरह से कोई मिसयूज आपके नेम और एड्रेस का नहीं हो सकता.
0: जी जी, बिल्कुल. और एक जो आप बता रहे थे मुझे कि IMEI के बारे में, वो उसकी वो क्या है और उसके बारे में भी हमें हमारे लिसनर्स को बताइएगा.
1: IMEI की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी. और इसको जानने के लिए सबसे जरूर आसान तरीका तो ये है कि जब आप अपना फ़ोन नया ख़रीदते हैं तो उसके डिब्बे पर और उसकी इनवॉइस के ऊपर IMEI रिटर्न में लिखा होता है. और अगर वो आपने कहीं सेफ रख दिया है और आपको अपने फ़ोन का फ़ौरन पता करना है IMEI नंबर, तो आपको *#06# ये करेंगे तो आपका IMEI नंबर फ़ौरन डिस्प्ले हो जाता है.
0: *#06#. तो कोई भी आसानी से बिल्कुल अपने फोन में चेक कर सकता है. जी, मैं देख पा रही हूँ कि आपने अभी टाइप किया और बिल्कुल आ ही गया आपके फोन पे. जी, तो ये इतना आसान

0: आसान है लेकिन लोगों को पता नहीं होता है इसके बारे में, और इसीलिए जो है वो फिर उन्हें कई सारी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। और यहाँ पे संचार साथी की जब हम बात करें तो हम एक एक एक एक उसका जो पॉइंट है वो ले रहे हैं, ऑप्शंस हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे एक और चीज़ है कि अपने खोए चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करें, ये सुविधा, इसके बारे में भी बताइएगा। अब हमने ये तो बात कर ली कि जब फोन चोरी हो जाता है तो उसके बाद अगर हमारे नंबर पर है वो, तो फिर उसके बाद कोई उस फोन का गलत इस्तेमाल करता है तो पुलिस हमें ही अरेस्ट करेगी या दोषी समझेगी, इसलिए ये जरूरी है कि हम उसको ब्लॉक करें या उसकी रिपोर्ट करें। लेकिन अपने खोए हुए चोरी मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करना अगर इंसान खुद चाहे तो वो कैसे सुविधा है संचार साथी पर?
1: जब आप अपने फोन के चोरी के लिए जब इसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक भी हो जाती है इन्फॉर्मेशन जो है।
0: अच्छा।
1: मतलब आपका फोन जो है अगर आपने IMEI नंबर और FIR के डिटेल सब डाल दिए,
0: हाँ,
1: तो सबसे पहला काम हमारा सिस्टम यही करता है कि जो भी आदमी जिसके हाथ में ये फोन है वो अगर किसी दूसरे ऑपरेटर का सिम डाल करके चालू भी करना चाहे तो वो उसको मतलब वो नहीं यूज कर पाएगा उसको, और हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये फोन उसने फला इस लोकेशन पे ऑन किया है, तो इस तरह से वो ब्लॉकिंग उसकी हो जाती है।
0: जी, यहाँ पे आपने FIR की बात की तो मुझे पूछना है कि ये हमें यहाँ पे संचार साथी पे रिपोर्ट करने के लिए भी FIR पहले दर्ज करनी पड़ती है, रिपोर्ट करनी पड़ती है, या हम डायरेक्टली भी कंप्लेंट कर सकते हैं?
1: FIR ये उस तरह की नॉर्मल क्राइम वाली FIR नहीं होती है, ये बहुत सिंपल सिस्टम, साधारण सी FIR जो प्लेन पेपर पे भी लिख के दी जाती है थानों में, और EFIR का भी एक कॉन्सेप्ट हर जगह चालू हो गया है, तो आप EFIR करके उसकी कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं।
0: जी, हमारे लिसनर्स भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और हम उनके भी क्वेश्चंस लेंगे अगली लिंक में, लेकिन अभी के लिए वक्त हो गया है एक और गाने का जो कह रहा है होशियार रहना। और आज हमारे इंटरव्यू का सारा मुद्दा ही यही है कि आपका फ़ोन जितना स्मार्ट है आप भी उतने स्मार्ट हो ही जाइए। बादशाहों से आएगा ये गाना, नीरज आर्यास कबीर कैफे गाएंगे ये ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग होशियार रहना। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना।
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।

0: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, ब्रेक फ्री ये प्रोग्राम चल रहा है और आज मेरे साथ बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट शामिल हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हमारी हो रही हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल टेलीकॉम मोहम्मद जफर इकबाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम बात कर रहे हैं संचार साथी इस ऐप के बारे में कि किस तरह से आप जो है ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद कई सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। एक एक ऑप्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जफर जी, पहले तो आपको हम वेलकम करते हैं एक बार फिर एफएम रेनबो पर।
1: थैंक यू।
0: और मैं जानना चाहूंगी, देखें जैसे कि पिछली लिंक में मैंने कहा कि संचार साथी ऐप पर अपने खोए हुए मोबाइल हैंडसेट के रिपोर्ट दर्ज करने के लिए FIR दर्ज करना जरूरी है क्या, ये हमने पूछा, तो आपने कहा कि EFIR भी हो सकती है आजकल, मतलब कि इसकी सुविधा भी है ना। तो पुलिस शिकायत क्यों जरूरी है ये बताइए।
1: पुलिस शिकायत इसलिए जरूरी है कि जो भी हैंडसेट पूरे इंडिया में कहीं भी मिलता है, जब ट्रेसेबिलिटी उसकी लगती है तो उसको एक एड्रेस चाहिए होता है जिस पे वो वापस आए।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए उस लोकल एड्रेस को जिस जगह पे जो नियरेस्ट पुलिस थाना होता है वहाँ पे इसको दर्ज कराने की जरूरत होती है। अदरवाइज हम उस मोबाइल को किस जगह ले आके फाइनली हैंडओवर करेंगे
0: जी, ये भी
1: तय करने के लिए एक पुलिस की शिकायत जरूरी होती है। मैं इस चीज में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, दर्शकों को ये सुन के अच्छा लगेगा कि संचार साथी कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। एक कुछ डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले जब से ये लगभग 2023 से ये संचार साथी ऐप हमारा चल रहा है और पूरे देश में लगभग 14 लाख फोन ऐसे हैं जो गायब हो चुके थे या चोरी हो गए थे या गुम हो गए थे, उनको हम लोगों ने संचार साथी की हेल्प से लोगों को वापस किया है।
0: क्या बात है, वाह।
1: और अकेले बंबई में हमने लगभग 1.5 लाख फोन लोगों को वापस किए हैं, और महाराष्ट्र में भी इसी तरह से 2 लाख के करीब हम लोगों ने फोन वापस किए हैं। तो आप लोग अगर इसको यूज करेंगे तो आप लोगों को खुद अंदाजा लगेगा कि कितनी बेहतर सुविधा है जो सरकार ने आप लोगों को निःशुल्क मुहैया करा रखी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और सर, हम हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस मांग रहे हैं, हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं 8657661071 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये जो हमारी बातचीत हो रही है उसको लेकर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें जो है पुणे से अमोघ ने मैसेज किया है और बहुत ही सर इनका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ होता भी रहता है कि हम किसी स्टोर शॉप या रेस्टोरेंट में चले जाएं तो वो लोग आजकल हमसे हमारा मोबाइल नंबर मांगते हैं और कहते हैं कि आप वो जो बिल है वो व्हाट्सएप कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में TRAI के क्या रूल्स हैं वो पूछ रहे हैं, और क्या ये लीगल है, वैलिड है कि इस तरह के स्टोर्स और जो शॉप्स होती हैं वो मोबाइल नंबर मांगे और हम उनको दें, और TRAI इसकी हमारी जो फ़ोन की हमारी जो सेफ्टी है उसकी डिटेल्स की किस तरह से अश्योर करते इंश्योर करता है कि ये हम दे तो रहे हैं लेकिन इसकी सेफ्टी का कितना ख्याल रखा जाता है, इसके बारे में वो पूछ रहे हैं।
1: देखिए, मोबाइल किसी स्टोर से शेयर करना टोटल वॉलेंट्रीली होता है, अगर आप खुद अपने देते हैं तभी वो स्टोर वाला उसको नोट करता है, और साथ में स्टोर वाले की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सिर्फ स्टोर के काम के लिए ही उस मोबाइल को यूज करे, वो उसका एक्सप्लॉयटेशन ना करे। अगर वो उसका कोई मिसयूज करता है तो TRAI

0: है उसका खिलाफ एक्शन ले सकती है।
1: जी।
0: लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारी जगहों पे शेयर कर दिए हैं अपने नंबर और बहुत सारे मैसेजेस अनसॉलिसिटेड जो आप नहीं चाहते वो आ रहे हैं, तो TRAI की ही एक DND करके, डू नॉट डिस्टर्ब करके भी एक सर्विस है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, तो आपको उस तरह के मैसेजेस आने बंद हो जाएंगे।
1: तो ये व्हाट्सएप के थ्रू होगा या फिर कैसे?
0: DND सर्विस भी व्हाट्सएप के थ्रू ही होती है।

0: बिल्कुल, जाने वाला पल जाने से पहले हमारे जो क्वेश्चंस हैं कुछ और, वो भी हम पूछ ही लेते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है एडिशनल डायरेक्टर जनरल टेलीकॉम मोहम्मद जफर इकबाल जी, और हमारी बात हो रही है संचार साथी ऐप को लेकर, और किस तरह से जो है आप अपना जितना फ़ोन स्मार्ट है उतने ही आप भी स्मार्ट बन सकते हैं, और कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड से आप बच सकते हैं अगर आपने ये संचार साथी ऐप डाउनलोड कर लिया तो। सो ब्रेक फ्री इस प्रोग्राम में सर इकबाल, आपको फिर से हम वेलकम करते हैं, और कुछ हमारे क्वेश्चंस और हैं एक दो, वो भी पूछ लें। एक तो ये कि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे देखने में मिलता है कि हमारे भारतीय नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स आती हैं, तो उसको रिपोर्ट करने की सुविधा संचार साथी ऐप में क्या है?
1: धन्यवाद शर्मीन। जिस तरह से बाकी टैप्स के बारे में हमने बताया, उसी तरह से इसके लिए भी भारतीय नंबर के साथ आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल की रिपोर्ट करें, एक टैब ये भी बना हुआ है संचार साथी में
0: जी।
1: और इसमें जब आप अपना वो नंबर डाल देते हैं तो फिर हम लोग उसको ट्रेस करते हैं। इसकी अहमियत क्यों है, इसका इसको हम मैं समझाना चाहूँगा कि जब कोई दूसरे देश की कॉल हमारे भारतवर्ष में आती है तो उसका हमारा एग्रीमेंट होता है दूसरे देश के टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ, और उसके हिसाब से हम लोगों का कुछ रेवेन्यू शेयरिंग भी होता है। उसको बाईपास करने के लिए इस तरह की गलत तरीके से कॉलें टर्मिनेट होती हैं, और इसमें देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ये बहुत गलत है, और ये रेवेन्यू लॉस भी है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। तो इस तरह की किसी के पास भी कोई कॉल आती है तो इसको आप संचार साथी ऐप पे जब रजिस्टर कर देते हैं तो फिर हम लोग उसको ट्रेस करके और जो कल्प्रित होता है उसको एप्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं
0: जी।
1: और फिर हम लोग जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से एक्शन भी लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की अगर कोई कॉल आए तो वो संचार साथी फिर इसको रिपोर्ट करे, ताकि जो हमारी जाँच एजेंसियाँ हैं वो इस पर उचित कार्रवाई कर सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमारे लिसनर्स भी, आप भी अगर इस तरह के कोई इंटरनेशनल कॉल्स आपके फ़ोन में आ रही हैं तो आप भी संचार साथी ऐप पर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और ब्लॉक कर सकते हैं, है ना। और सर मुझे एक चीज़ और भी पूछनी थी कि जैसे पहले केबल्स हुआ करते थे, केबल ऑपरेटर्स हुआ करते थे, वो अब उतना तो कोई केबल यूज़ नहीं करता, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इंटरनेट प्रोवाइडर्स बन रहे हैं, और कई सारे हमें सोसाइटी वगैरह में भी ऐसे एड्स वगैरह यू नो वॉल्स पर चिपके हुए मिलते हैं और लोग फिर उन्हें कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वो जेन्युइन है या नहीं? क्योंकि देखें, अपने वायरलाइन इंटरनेट सेवा प्रदाता को जाने, ये सुविधा भी संचार साथी पोर्टल पर अवेलेबल है, तो इसका जो यूज है इंटरनेट लेते हुए लोग किस तरह से कर सकते हैं?
1: बिल्कुल सही फरमाया शर्मीन आपने। इसके लिए हम लोगों ने पिन कोड ड्रिवन एक सिस्टम बना रखा है संचार साथी में
0: जी।
1: आप जहाँ रहते हैं या जिस जगह, जिस शॉप पे या जिस ऑफिस में आपको इंटरनेट सर्विस लेनी है, तो जो पिन कोड आप उसमें एंटर करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने जिन जिन लोगों को ऑथराइज कर रखा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उस जियोग्राफिकल लोकेशन में, उनके नाम और उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आ जाता है। तो आप ये चेक करें कि जो आदमी आ रहा है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन से है जिस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है इंटरनेट सर्विस देने के लिए। अगर वो उस लोकेशन का नहीं है तो फिर आप उससे मत लें, वरना आपका कोई नुकसान हो सकता है।
0: बिल्कुल, तो जो ऑथराइज्ड इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उन्हीं से लिया कीजिएगा। और हमारे लिसनर्स की तरफ से भी क्वेश्चंस तो आ ही रहे थे, लेकिन एक बहुत ही अच्छा, बेहतरीन और मैं कहूँ कि अप्रिशिएशन वाला मैसेज भी हमें मिला है। हमें संजय दर्शन जी ने मैसेज किया है, वो कहते हैं कि कांदिवली समता नगर पुलिस थाने ने 980 के आसपास मोबाइल वापस किए, उसमें मेरी बेटी का भी मोबाइल था, तो आपको धन्यवाद कह रहे हैं।
1: धन्यवाद संजय जी।
0: जी मतलब इतना, एक हमेशा ऐसे होता है कि कोई सुविधा शुरू तो होती है लेकिन उसके बाद वो रूट लेवल तक अपना काम कर रही है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ व्हाट्सएप के थ्रू हमें ये पता चल गया और बहुत बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी लिसनर्स हमारे इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप भी जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिएगा संचार साथी ऐप। और एक बार फिर मैं हमारे

0: आज के जो खास मेहमान हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल टेलीकॉम मोहम्मद जफर इकबाल जी और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन से डायरेक्टर अरविंद कुमार जी, आप दोनों को मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने अपने दिन का इतना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए हैं. आप हमारे लिसनर्स को इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
1: थैंक यू शर्मीन, आपका भी और रेडियो रेनबो FM का भी कि उन्होंने हमें मौका दिया अपनी बात को FM के थ्रू दर्शकों सुनने वालों तक पहुंचाने के लिए. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और जो हमारे बहुत सारे रेनबो FM के सुनने वाले हैं, उन्होंने हमारी बातों को गौर से सुना. आपके तमाम लिसनर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद
0: जी. थैंक यू सर.
2: थैंक यू मैडम, आपको भी और दर्शकों को. खासतौर से बेनिफिट उनको ही होना है तो
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
2: ने काफ़ी अच्छे से बताया. फर्दर कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगी तो भेज सकते हैं. हमारा पर्पज यही है कि आपको टेली कम्युनिकेशन का निर्बाध रूप से सेवा मिले और कोई नुकसान ना हो किसी तरह का, जो फ्रॉड हुआ है उससे आप बचें और जागरूक हों. धन्यवाद.
0: धन्यवाद जी सर, थैंक यू सो मच. अभी हम एक छोटा सा एड हम अभी आएगी और उसके बाद गानों का सिलसिला जारी रहेगा. बने रहिएगा इसी फ्रिक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स.
3: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प.
4: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू.
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेनबो और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। भारत के नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस अर्थात ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। इस प्लेटफॉर्म पर सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 50 लाख से ज्यादा टेली कंसल्टेशंस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन ने आज आजाद मैदान में होने वाली अपनी एक दिन की हड़ताल

और आंदोलन को वापस ले लिया है। महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे के साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स की अलग अलग मांगों पर हुई सकारात्मक बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। और समाचार में आगे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश के आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और समाचार के अंत में, नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहा सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई। इनमें 25 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी पर। आकाशवाणी FM रेनबो। हाँ जी, म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप। और जी, म्यूजिक कैफे बिल्कुल ही खुल चुका है। आज हमारा कैफे खुला है एक खूबसूरत से हेरिटेज कैफे में। चारों तरफ पुरानी आर्किटेक्चर, ऊंची सीलिंग्स, लकड़ी के दरवाजे, विंटेज फर्नीचर और दीवारों पर लगी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। कहीं कोई आराम से कॉफ़ी इंजॉय कर रहा है तो कहीं कोई इन पुरानी चीज़ों को बड़े गौर से देख रहा है, जैसे इनमें कोई कहानी ढूंढ रहा हो। तो अपनी फेवरेट सीट चुन लीजिए, आप भी कॉफी का पहला सिप लीजिए और अगले कुछ समय के लिए, कुछ समय इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम 12:30 तक ही चलने वाला है, उसके बाद आप स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुन पाएंगे। तो कुछ समय के लिए इस हेरिटेज कैफे को अपना ही कैफे समझिए। चलिए इस खूबसूरत और टाइमलेस आफ्टरनून की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से सॉन्ग के साथ। आज विनोद खन्ना साहब की बर्थ एनिवर्सरी है तो उन्हीं की फिल्म जुर्म से सुनाते हैं ये गाना, जब कोई बात बिगड़ जाए। कुमार सानू की आवाज़ है, दिवन्ने से लिखा, साधना सरगम भी साथ देंगी। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

क्या बात है, इन पुराने गानों की एक अलग ही बात है. वो पुराने लगते ही नहीं हैं, इतने फ्रेश आज भी हमें महसूस होते हैं. वैसे पुरानी जगहों और पुराने सॉन्ग्स में एक चीज़ कॉमन होती है, दोनों अपने साथ कुछ यादें लेकर चलते रहते हैं. आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप. म्यूज़िक कैफ़े ये प्रोग्राम चल रहा है. आज हमारा कैफ़े लगा हुआ है एक हेरिटेज प्लेस पर, और इतनी खूबसूरत जगह है ये. मैं हर बार हमारे म्यूज़िक कैफ़े को कहीं कोई ऐसे जगह ले जाती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट जगह. एक बार जैसे आपको याद होगा, लास्ट टाइम हम आर्ट कैफ़े में गए थे, है ना. तो आज हेरिटेज कैफ़े है ये. जैसे कि मैंने पुरानी जगहों और पुराने गानों की बात करी थी, दोनों जो है यादें कैरी करते हैं अपने साथ साथ. एक पुरानी बिल्डिंग देखकर अचानक बचपन याद आ सकता है आपको, कोई पुरानी तस्वीर किसी चेहरे की याद दिला सकती है, और कोई सॉन्ग सुनते ही हम सीधा किसी पुराने वक्त में पहुँच जाते हैं, है ना. शायद इसीलिए कुछ गाने जो है कभी पुराने नहीं होते, वो बस हर बार हमें एक नई मेमोरी के साथ मिलते हैं. तो इस हेरिटेज कैफ़े के इस म्यूज़िकल सफ़र में हम जो है ऐसे ही पुराने लेकिन फ्रेश गाने सुनेंगे. यहाँ बैठे बैठे एक और जो है मुझको बात नोटिस भी हो रही है इस हेरिटेज कैफ़े में, कि जब आसपास इतनी पुरानी चीज़ें हो ना, तो कॉफ़ी पीना भी थोड़ा नॉस्टैल्जिक लगने लगता है. एक तरफ विंटेज क्लॉक है, सामने पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है कुछ इस तरह का. और ऐसे लग रहा है जैसे प्रेजेंट में बैठे हुए भी हमने थोड़ी देर के लिए पास्ट को विज़िट कर लिया हो. और आप समझ ही गए होंगे कौन सा गाना प्ले होने वाला है. और शायद इसीलिए हेरिटेज स्पेसेस हमें इतने स्पेशल भी लगते हैं. वो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होते, वो अपने अंदर वक्त का एक हिस्सा संभाल कर रखते हैं. तो इसी खूबसूरत एटमॉस्फेयर में एक और गाना हो जाए, विनोद खन्ना साहब की बर्थ एनिवर्सरी स्पेशल रखते हैं हम ये म्यूज़िक कैफ़े, ठीक है. अमर अकबर अंथनी से आएगा ये गाना. रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोरदा की आवाज़ें, लता दीदी की आवाज़ भी, मीठी आवाज़ भी इन आवाज़ों में शामिल है.

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

हाँ जी, म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप म्यूजिक कैफे में। आज हमारा कैफे है बिल्कुल ही एक हेरिटेज वाली जगह में, हेरिटेज बिल्डिंग में, और इसीलिए हमारे कैफे का नाम म्यूजिक कैफे तो है ही, क्योंकि हम म्यूजिक चल रहा है, लेकिन यहाँ जो आसपास की इमारतें हैं वो बिल्कुल हेरिटेज वाली हैं और पुरानी कहानियाँ दोहरा रही हैं, हम उनको निहार रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे विंटेज क्लॉक लगी हुई है, कई सारी पुराने फोटोज हैं, कॉफी धीरे धीरे खत्म हो रही है, लोग अब भी उन पुरानी फोटोग्राफ्स और चीजों को देख रहे हैं, और बैकग्राउंड में हम म्यूजिक तो चला ही रहे हैं, और बहुत जल्द आप ये वाला एक और खूबसूरत गाना सुनेंगे। और ऑनेस्टली ऐसे माहौल में थोड़ी देर के लिए वक्त को स्लो कर देने का मन कर देता है ना, नो रश नो हरी, बस कॉफी म्यूजिक और कुछ पुरानी कहानियां। विनोद खन्ना साहब के बर्थडे स्पेशल कर रहे हैं हम म्यूज़िक कैफ़े में, सो मैंने सोचा क्यों ना आज हम पुराने बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, तो ये खूबसूरत और सदाबहार गाने जो विनोद खन्ना साहब की फ़िल्मों के हैं वो प्ले किए जाएं। इम्तिहान से आएगा ये गाना, किशोरदा की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने से लिखा, लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी की कॉम्पोजिशन।

क्या बात है, ऐसे ऐसे ही गानों की तो हम बात कर रहे हैं कि आज हम हमारा म्यूज़िक कैफ़े लेकर आए हैं हेरिटेज बिल्डिंग में एक, और पुरानी इमारतें और पुराने गानों का, जैसे कि मैंने कहा कि वो अपने आप में इतनी सारी कहानियां लेकर होती हैं कि कितना ही वक्त गुजर जाए ना, उनको जब देखें एक नई कहानी, एक नई याद हमें याद आ जाती है। वादा कर ले साजना, ये सुना आपने हाथ की सफाई, इस फिल्म से लता दीदी रफ़ी साहब की आवाज़ें थी, गुलशन बाबरा ने इसे लिखा था, कल्याण जी आनंद जी की कॉम्पोजिशन। म्यूजिक कैफे में आज हमारी जो ये कॉफ़ी के साथ हमने पुराने वक्त की कुछ झलकियाँ सुनी, कुछ यादों को महसूस किया और म्यूज़िक के ज़रिए उनमें अपने कुछ रंग भी भर दिए। तो अब ये कैफ़े जो है उसको बंद करने का, हाँ जी क्लोज़ करने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले हमारी प्लेलिस्ट का आखिरी सॉन्ग भी आपको सुनाते हैं। और ये भी आ रहा है विनोद खन्ना साहब की ही एक फिल्म से, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म थी और क्या ही कैरेक्टर प्ले किया था विनोद खन्ना।

आपने, मुझे बहुत पसंद है। और इस फिल्म में स्पेशली ये जो कैरेक्टर रहा है, मैं कौन से फिल्म की बात कर रही हूँ आप गाना सुन के समझ जाएंगे। सो अब कैफे को यहीं रोक बंद करते हैं और अगली बारी किसी और जगह, कोई और पते पर पहुंच जाएगा ये कैफे। लोकेशन नहीं होगी, माहौल जो है वो भी नया होगा, लेकिन म्यूजिक के साथ मिलने का हमारा जो ये सिलसिला है ना, ये ऐसे ही जारी रहेगा। आपको बता दें कि 12:30 बजे आप स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुन पाएंगे और उसके बाद जो है 1 बजे आप न्यूज़ सुनेंगे और 1:05 पर हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जिसमें हम आपकी पसंद के गाने प्ले करते हैं। आज मैं कौन सी थीम लेकर आई हूँ वो मैं आपको हिट एंड हॉट में ही बता दूंगी। 1 बजे छत्रपति संभाजीनगर से मराठी में समाचार जाएंगे, उसके बाद 1:05 पर हिट एंड हॉट। तो अभी के लिए जो है म्यूजिक कैफे से जाते जाते आपको सुनाते हैं, चांदनी फिल्म से आएगा ये गाना, सुरेश वाडकर जी, अनुपमा देशपांडे की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी साहब ने क्या ही प्यारा इसे लिखा, शिव हरी की बेहतरीन कॉम्पोजिशन लगी आज सावन की, हाय हाय आप लोगों को भी वो गाना याद आ गया होगा, है ना। सो इसे एंजॉय कीजिए, मिलते हैं हिट एंड हॉट इस प्रोग्राम में।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार।

0: जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
1: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
1: ईदूग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है,
0: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है
1: जी।
0: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए
1: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और इसके साथ हमें मिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी का,
1: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन जी ने लिखा है,
0: मैं आप लोगों का उमंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ। बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी प्रस्तुति रहती है
1: जी।
0: कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाता है। धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप के साथ साथ लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है।
1: पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। आगे लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए के अंतर्गत प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर है लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
1: अजीत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
0: विमलेश जी, मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
1: बिल्कुल सही अजीत जी, लेकिन आज की कहानी नोबेल पुरस्कार के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है, और उस विरासत को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
0: तो चलिए श्रोताओ आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
1: बालक अल्फ्रेड नोबेल को बचपन से ही विज्ञान और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वे बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
0: श्रोताओं उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था
1: जी।
0: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
1: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
0: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ लेकिन श्रोताओं अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
1: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था। लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
0: और इसी क्रम में श्रोताओ अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
1: क्या हुआ था अजीत जी?
0: विमलेश जी, वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी जबकि वे जीवित थे
1: जी।
0: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
1: जी, क्या छपा था?
0: अखबार में छपा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
1: और श्रोताओं, इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे, मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी?
0: जी, श्रोताओं, डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
1: 1895 में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
0: आशुतोष, फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत

0: ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे मानवता के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
1: जी अजीत जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओ, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
0: तो श्रोताओ, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
1: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
0: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है।
1: जी,
0: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके, और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
1: यानी महानता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं बल्कि उन कामों में भी होती है जो किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए, और हमारा सवाल है,
1: हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारा अच्छा काम लोगों के काम आता रहे।
0: और यही सोच एक व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है,
1: और यही है नोबेल पुरस्कार की कहानी।
0: जी
1: तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: हमारा आज का प्रश्न है, अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2: मगरमच्छ अपने आप से।
3: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मित्र कछुए।
4: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
3: क्या बताओ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
4: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली?
3: अरे मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता।
4: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
3: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
4: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो।
3: ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
2: एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ

0: कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर कहता है,
1: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
2: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो?
1: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग से धार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
2: है? क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
1: क्या कहा, क्या कहा?
2: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
1: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो, बेचारा मरा पड़ा है।
0: गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है,
2: अरे ये तो बिल्कुल शांत है।
3: ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
4: हाँ, देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा है।
2: पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
4: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
0: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
2: अपने मित्र को देखो।
1: खोल दो अपनी आंखें। भाग गया गीदड़। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए। अब उसे पकड़ना कठिन है।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
6: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
7: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
5: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक।
8: इस कार्यक्रम में महायोगी अष्टावक्र के बारे में जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
9: त्रेता युग में आरुणि उद्दालक नाम के महर्षि थे। वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
10: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी। ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे ऋषि कहोड़। मेधावी और मेहनती कहोड़ वेद शास्त्रों में अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थी। एक दिन

0: तहोड़, मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारी शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
1: जो आज्ञा आचार्य।
0: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी रखो।

0: पति कहोड़ और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी।
2: समय बीता, सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थीं, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे, और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
0: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
3: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
4: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
3: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
4: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
3: तब कहोड़ कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।

0: बेटा, वो पिता है तेरे, बेटा पिता है।
1: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया।
2: राजा जनक, मैं ऋषि कहोड़।
3: ओह पूज्य ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहां बंदी नाम का एक विद्वान है, शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
2: हे राजन, मुझे कोशिश करने दे।
4: आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या।

0: शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ परंतु अधिक देर ना चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक ना पाए थे।
1: फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया।
2: अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे। अब यज्ञ सफल कैसे होगा?
0: जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे।
3: श्वेत केतु, अष्टावक्र, मुझे प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए।
4: हाँ,
3: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
4: कब चलना है?
3: बस अभी तुरंत।
0: चौदह वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।
5: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
3: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं। कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
1: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया।
2: बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है?
6: मेरा नाम श्वेत केतु है। हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
3: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूं।
2: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
3: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दंभी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
0: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
2: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है? जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता? और दिल किसके पास नहीं है? और यह भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
3: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बहती है।
2: अत्यंत सुंदर।
1: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
2: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
3: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
7: मिथिलेश की जय हो। मिथिलेश की जय हो। जय हो।
0: दरबार में बैठे सभी लोग खिल खिलाकर हंसने लगे।
3: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
1: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगा।
2: अन्य सभी हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार आप क्यों हंस रहे हैं?
3: आप सब अपने आप को महान समझते हैं और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है? परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
2: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझाकर स्पष्ट करें।
3: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है राजन।
2: बालक, तुम तो विलक्षण हो और मेधावी वक्ता भी। वाक द्वंद्व का अंतिम दिवस है आज। वाद विवाद करने के लिए मैं इन होनहार बालकों को यज्ञ मंडप में महापंडित बंदी से मिलने की अनुमति देता हूं। मंडप में एक वेदी पर आचार्य उद्दालक के शिष्य अष्टावक्र और दूसरी वेदी पर राजपंडित बंदी।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो. शर्मीन संग शामिल हैं आप और आपका चहेता आपका फेवरेट प्रोग्राम हिट एंड हॉट शुरू हो गया है जिसमें आपकी पसंद के गाने प्ले होते हैं लेकिन एक थीम के साथ हम चलते हैं, है ना. हर बारी एक कोई थीम लेकर आती हूँ मैं और उसके अराउंड जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो आप मुझे भेज देते हैं 8657661071 पर. 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है. तो आज की थीम इसलिए भी मैं ले आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गाना जो है वो वायरल हो गया है और कई सारे लोग जो हैं इस पर रील्स बना रहे हैं ना. और मैं बात कर रही हूँ वो गाने की जो के है छड़ले छड़ले बाल, और उस पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सॉन्ग्स बना रहे हैं, अपने बालों को जो है वो एक तरह से फ्लॉन्ट कर रहे हैं. तो मैंने सोचा क्यों सिर्फ ऑनलाइन ही ये ट्रेंड चलता रहे, हम भी रेडियो के जरिए भी जो है वो जुल्फों को डेडिकेट कर देते हैं, है ना. ये आर सो आज आपने ऐसे गाने रिक्वेस्ट करने हैं आपके फेवरेट सॉन्ग्स जिसमें जुल्फें जुल्फों जुल्फ बाल इन सब की बात हो रही है, मतलब बालों की तारीफ हो रही है, ठीक है. तो 70s से लेके अब तक के एरा में जितना भी इस तरह से गाने बने हैं बालों को लेकर बालों की खूबसूरती को लेकर, आपने उसे उनमें से जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है उसको भेज देना है 8657

1971 पर। शुरुआत करते हैं मन फिल्म के इस गाने के साथ, उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें, समीर ने इसे लिखा, काली नागिन के जैसे जुल्फें तेरी काली काली।

कॉम्पोजिशन. आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप हिट एंड हॉट इस प्रोग्राम में. मैंने आपसे एक थीम के अराउंड आपके फेवरेट सॉन्ग्स मांगे हैं और वो है जुल्फ, जुल्फ, जुल्फें या फिर जुल्फों या फिर मतलब के बालों के बारे में, क्योंकि आजकल वो एक गाना है ना छल्ले छल्ले बाल, उस पर काफ़ी सारे लोग रील बना रहे हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी रेडियो पर जुल्फों के अराउंड सॉन्ग्स जो हैं वो आपसे मांगे, आपके फेवरेट सॉन्ग्स मांगे. तो इस गाने की रिक्वेस्ट काफ़ी आई थी सो मैंने सोचा इसको प्ले कर देते हैं. दीपा पालकर, पंकज मोहड़, संजय दर्शन, फिरोज सिगनपुरिया जी, इन सब ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी. और बिना किसी देरी के अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जिसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आई हुई है. एंड इनफैक्ट अगर किसी के गाने इस आर में प्ले नहीं हो पाते हैं तो उन सब के लिए भी है ये गाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी आप फरमाइश कर रहे हैं. तो आए आप सभी के लिए और स्पेशली विजेंद्र जी जिन्होंने अकोला से मैसेज किया है, शुभ लक्ष्मी जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, इन सबकी फरमाइश पर जो है ये गाना आ रहा है. और भी हमें रिक्वेस्ट किया गया था गाना लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था, मैंने इनसे नाम पूछा है. सो जब वो नाम बताती हैं तो उनके लिए भी है ये गाना. आप लोग जब भी मैसेज भेजिएगा ध्यान रखें कि अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिए. 8656 1071 8657 6671, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट है आपने भेजनी है. अभी के लिए आए आपको सुनाते हैं तीसरी मंजिल से आएगा ये गाना, आशा जी रफी साहब की आवाज़ें हैं, मजरू साहब ने से लिखा, आडी बर्मन जी की कॉम्पोजिशन, ओ हसीना जुल्फों वाली.

से सुना आपने ये गाना, श्रेया घोषाल मोहित चौहान की आवाजें थी, प्रसून जोशी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप हिट एंड हॉट इस प्रोग्राम में। मैंने आपको थीम दी है जुल्फें, हाँ जी, बालों को लेकर आपने अपनी सॉन्ग रिक्वेस्टें भेजनी है। और हमें राकेश माथुर जी ने त्रिशूल से इस गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, आपकी महकी हुई जुल्फों को। लता दीदी गाएंगी, यसुदास जी साथ देंगे, साहिर साहब ने इसे लिखा है। और मैंने कहा था कि ओ हसीना जुल्फों वाली, एक ने रिक्वेस्ट किया था जिन्होंने अपना नाम नहीं भेजा था, तो ग्लोरिया फोर्टाडो उनका नाम है, तो उन्होंने वो गाना रिक्वेस्ट किया था। अभी के लिए राकेश जी की रिक्वेस्ट पर ये गाना सुनेंगे आप। और आपको बता दें 1:30 बजे आप हमारे न्यूज़ स्टूडियो से मराठी में समाचार सुन पाएंगे, और उसके बाद 1:40 पर आपकी रिक्वेस्ट सॉन्ग्स लेकर, हिट एंड हॉट लेकर मैं दोबारा आऊंगी, ठीक है।

श्रुति की रिक्वेस्ट पर सुना आपने ये गाना ऊंचा लंबा कद, और उसमें भी एक लाइन आती है, तेरी जुल्फों में है रातें, और इसीलिए उन्होंने ये गाना हमसे मांगा था, क्योंकि आज जो है हम हिट एंड हॉट में हमारी जो थीम है वो हमने जुल्फों को, बालों को डेडिकेट कर दी है। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। वेलकम टू द जंगल से सुना आपने ये गाना, आनंद राज आनंद और रुबाई ने गाया इसे, और मेघा बाली आनंद राज आनंद भी साथ दे रहे थे, विक्रम मॉन्ट्रोज आनंद राज आनंद की कॉम्पोजिशन थी। और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि वक्त रह गया है बहुत कम और आप लोगों की सॉन्ग रिक्वेस्टें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। आपको बता दें ईयर 70s से लेकर अभी तक के जो गाने हैं उनमें से कोई अगर आपका फेवरेट जुल्फों पर कोई गाना है, बालों पर कोई गाना है, तो भेजिएगा 8657661071 पर, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अभी जो हम प्ले कर रहे हैं गाना वो है बस इतना सा ख्वाब है, इस फिल्म से अलका याग्निक, शान की आवाजें हैं, गोल्डी बहल श्यामराज ने इसको लिखा, आदेश श्रीवास्तव की कॉम्पोजिशन, ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाएं।

चलें जी, इसी के साथ पिंटो की इस रिक्वेस्ट के साथ ही हमारे जाने का वक्त हो गया है. हिट एंड हॉट को यहीं रोकने का वक्त हो गया है. आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो. शर्मीन संग शामिल थे आप. हाँ जी, अब मेरी आपकी मुलाकात होगी 15 अक्टूबर को थर्सडे शाम का जो शो होता है हमारा 5 से 8 के बीच में. तो कहीं लिख लीजिएगा, जहन नशीन कर लीजिएगा, लेकिन ट्यून इन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. 15 अक्टूबर को शाम 5 से 8 के बीच मिलते हैं आपसे. और एक बार सबके नाम ले लूं जिनके गाने जो हैं वो प्ले हो पाए, जिनके नहीं हो पाए लेकिन मैसेजेस आपके आए हैं. तो नाम लेना तो बनता है. हमें कॉल आया था पिंटो का, फिर हमें तनुजा शर्मा ने अंधेरी से मैसेज किया था, दीपा पालकर का मैसेज आया हुआ है, विजेंद्र जी ने अकोला से, अभिजीत गवानकर और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, दिग्दर्शन और कविता हमें सुन रहे थे, हरजिंदर छिंदा जी हमें सुन रहे थे उनकी फैमिली के साथ, और हमें रविंद्र जी ने कोड़ापे से मैसेज किया था, और जगदीश सिंह जी, वीरपाल जी और उनकी सभी की फैमिली हमें सुन रहे थे, प्रकाश शिंदे जी ने मैसेज किया था, राकेश माथुर जी, और हमें ग्लोरिया ने मैसेज किया था, गुरमीत सिंह, मीता सिंह हमें सुन रहे थे न्यू दिल्ली से, और हमें मैसेज किया था झारखंड से, अपना नाम आप पहले लिख दीजिएगा, काफ़ी सारे लोगों के नाम है, शिवा गोप, प्रेम गोप और पूरी फैमिली ने हमें मैसेज किया है, और हमें हरजिंदर जी भाटिया का भी मैसेज आया हुआ है, संजय दर्शन जी, संदीप कुमार जी, चेतन कुमार, फिरोज सिगनपुरिया जी, पंकज मोहोड़, अजय सकर जी ने इंदौर से मैसेज किया हुआ था, और हमें फाजिलका पंजाब से काफ़ी सारे लोग सुन रहे थे, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, विशु खेड़ा, भूषण खेड़ा उनकी फैमिली, अंकित ने मैसेज किया था, शुभ लक्ष्मी जी का मैसेज आया हुआ था, प्रमोद जी, आकांक्षा सिन्हा हमें सुन रही थी, गगनदीप ठंडी जी और उनकी फैमिली हमें सुन रहे थे, मिंटो और उनकी फैमिली हमें पंजाब से सुन रहे थे. पंजाब से काफ़ी सारे लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. फिर हमें हिरमानी वर्मा और उनकी फैमिली सुन रही थी, हमें जॉन डिकोस्टा और उनकी फैमिली सुन रही थी, और हमें टीडी मल्होत्रा जी, ऋतिक मल्होत्रा और उनकी फैमिली हमें सुन रहे थे, हितेंद्र दास जी का मैसेज आया हुआ था, यशवंत जी ने मैसेज किया था, मेहर अरोरा ने राजस्थान से मैसेज किया था, चंद्रकांत ठाकुर जी का मैसेज आया हुआ है, प्रणव शिंदे, मनीष पाटिल, विनोद ने दहीसर से मैसेज किया था, और हमें दादर से बाबा ने मैसेज किया था, मंगेश जोशी का मैसेज आया हुआ था, वैदही, और हमें अंजू ने, डॉक्टर अंजू ने अंधेरी ईस्ट से मैसेज किया था. सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. अब मेरी आपकी मुलाकात होगी 15 अक्टूबर को शाम 5 से 8 के बीच में. ठीक है, आप ही के रिक्वेस्ट किए हुए ये गाने हैं, सबके नाम तो ले लिए हैं मैंने. तो आए आपको सुनाते हैं ये वाला गाना, कभी हाँ कभी ना, इस फिल्म से कुमार सानू गाएंगे, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा, जतिन ललित की कॉम्पोजिशन, और जुल्फों की थीम है उसको बरकरार रखते हुए, क्योंकि इसमें भी एक लाइन आती है ना, जुल्फों की शाम. हाँ, तो बस इसीलिए आप में से किसी ने मैसेज किया था या कॉल किया था, आई थिंक हमें ये सुशील ने कॉल पे कहा था इस गाने के बारे में. तो इस गाने के साथ ही आपको छोड़े जा रही हूँ. अब जा रही है शर्मीन. अपना ख्याल रखें सामईन.

0: that India needs a strong and integrated maritime ecosystem to further enhance its maritime power and strengthen the country's defense capabilities. The defense minister today launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5, and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam. Addressing the gathering, Mr. Singh said the launch of Fleet Support Ship 1, keel laying of Fleet Support Ship 5 and inauguration of upgraded infrastructure at HSL mark important steps in strengthening India's maritime capabilities. He said Fleet Support Ship 1, named Surya, will strengthen the Indian Navy's reach, endurance and operational effectiveness. He said the new slipway and Goliath crane at HSL will further enhance the shipyard's capacity to undertake large shipbuilding projects.
1: वर्ष 2025 में
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड गॉट मिनी रत्ना कैटेगरी वन स्टेटस अकॉर्डेड इन 2025 रिफ्लेक्ट्स इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंप्रूव्ड फाइनेंशियल पोजीशन. एचएसएल हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग इंडियाज मैरीटाइम एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट फॉर मोर देन 8 डिकेड्स. इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पास्ट डिकेड विद द कंट्री मूविंग फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवांस सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म डोमेस्टिकली. द नेवी शिपयार्ड्स डीआरडीओ एकेडमिया इंडस्ट्री MSMEs and startup needs to work together as an integrated team to build a strong national maritime ecosystem.
1: Aur tezi se execute karega.
0: Mr. Singh said Hindustan Shipyard Limited has played an important role in meeting India's maritime and defence requirements for more than 8 decades. He said the shipyard's Mini Ratna Category 1 status, accorded in 2025, reflects its

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और 19 स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं।

0: और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टांचावडी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मदुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधु बेट पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
2: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
4: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
2: अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर्ट @AIR News Hindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
6: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे

0: ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुँच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ ओपीडी परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
2: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
3: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
1: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
3: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट CJI द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। CJI ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है।

0: दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हूतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदैदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हूतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जला वितरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ ऋषि और कार्यक्रम शुरू हो गया है लव यू जिंदगी। तो बताइए आप सब कैसे हैं, मुझे मैसेज कीजिए। और आकाशवाणी के मुंबई केंद्र पर ये जो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर, बहुत ही लोगों का बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम लव यू जिंदगी। और आज के लिए आपकी एक घंटे की साथी मैं होने वाली हूँ उर्वशी लव यू जिंदगी में। उसके बाद अंदाजे बया में बहुत ही खूबसूरत शेर, कुछ गज़लें, कुछ नज़में मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और फिर आपका फेवरेट, आपके डिमांड वाला शो तो है ही, तो हम तुम्हें आपकी पसंद के गाने भी हम बजाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत तीन घंटे मैं आपके साथ गुजारने वाली हूँ आज। तो अगर आपको कुछ कहना है, कोई गाना रिक्वेस्ट करना है, तो अभी से मुझे मैसेज आप कर सकते हैं, आपको पता ही है 8657661071 पे। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनाती हूँ और मिलती हूँ इस गाने के बाद।

लव यू जिंदगी सुन रहे हैं आप मेरे यानी उर्वशी के साथ। बहुत ही खूबसूरत सा गाना बहारा, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इस फिल्म के बहुत सारे गाने हैं जो मुझे पसंद है, पर ये वाला गाना मेरा पर्सनल फेवरेट है। कुछ गाने आपके साथ ना ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो कुछ टाइम में ले जाते हैं, आपको टाइम ट्रैवल करवा देते हैं। जैसे ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ, जब ये गाना है तो मैं स्कूल में थी शायद, तो वो स्कूल यूनिफॉर्म में आप घर पे आते हो और तब भी रेडियो बजता रहता था घर पे, तो ये गाना उसमें आता था, तो मेरी अचानक से ना वो यादें ताज़ा हो जाती है। तो गाने सिर्फ गाने नहीं होते हैं, वो कभी कभी आपके लिए टाइम ट्रैवल का मीडियम भी बन सकते हैं। आपकी कैसी यादें हैं गानों के साथ, आपके साथ गाने क्या क्या करते हैं मुझे बताइए। आपको हमारा नंबर तो मालूम है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी जो भी फीलिंग्स हैं उससे सुनना चाहूँगी, मुझे मज़ा आता है गानों के बारे में बातें करने में। तो चलिए इसी बात पर एक और खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनाती हूँ।

FM रेनबो पर आप मेरे यानी उर्वशी के साथ सुन रहे हैं लव यू जिंदगी। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पूछा था ना कि आप जब गाने सुनते हो, जैसे मैं आपको टाइम ट्रैवल के बारे में बता रही थी ना कि मेरे लिए ना गाने टाइम ट्रैवल का काम करते हैं, तो जिंदगी ऐसी जगहों पे ले जाती है टाइम ट्रैवल करवा के इन मेमोरीज की, बोलने का मन करता है लव यू जिंदगी। प्रशिक बोरकर का मुझे एक बहुत खूबसूरत सा आंसर आया था। उन्होंने लिखा है कि वो जब भी कोई गाना सुनते हैं तो उनको वो टाइम से भी ज़्यादा वो सिचुएशन या वो जगह याद आती है जहाँ पे वो थे। जैसे मैंने अभी बहारा सुनाया तो उनको उनके इंजीनियरिंग का जो टाइम था वो याद आ गया, एक्शन रिप्ले का जो टाइम था जो मैंने वो गाना सुनाया ओ बेखबर, तो वो उनकी ज़िंदगी का कुछ लो पॉइंट था। वैसे ही उनके कुछ अलग अलग गानों को लेके अलग अलग जैसे कि यू नो टाइम कैप्सूल्स बने हुए होते हैं दिमाग में। कॉलेज डेज किसी को याद आते हैं, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं, बहुत सारे लोग भी हमारे साथ हैं। विजय जी कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत है गानों की प्लेलिस्ट। जी हाँ, थैंक यू सो मच। मैं जब भी शो करने आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि यू नो अपने जो भी गाने मैं लेके जा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत हो, ताकि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाने एंजॉय कर सके मेरे साथ। तो चलिए इसी बात पर मैं आपको एक और खूबसूरत सा गाना सुनाती हूँ, इन लव यू जिंदगी।

लव यू जिंदगी सुन रहे थे आप मेरे यानी उर्वशी के साथ। और अब लव यू जिंदगी से जो कहते हैं ना टाइम लिमिट खत्म करके हम जाएंगे अंदाज बयां की तरफ। उससे पहले आप प्रादेशिक समाचार भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत गाना भी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो अगर आपकी कोई पसंद की गज़ल है जो आप सुनना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। वैसे तो हम तुम में मैं सुनाने वाली हूँ आपको आपकी फरमाइश के गाने, लेकिन ये जो अंदाज़े बयां वाला वक्त है उसमें बहुत लोगों को गज़लें पसंद आती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी अगर फरमाइश पूरी कर पाऊँ। तो चलिए अभी अंदाज़े बयां में मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

अंदाज़े बयां में आपका स्वागत है और मैं हूँ उर्वशी। आवाज़ देके देख लो शायद वो मिल जाए, आवाज़ देके देख लो शायद वो मिल जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रहेगा तो है। मुनीर नियाज़ी साहब का ये शेर सिर्फ किसी इंसान को पुकारने की बात नहीं करता, ये उन रिश्तों की बात करता है जो कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत करीब थे लेकिन वक्त की बारिश में कहीं धुंधले पड़ गए। शायद आज की शाम में किसी को आपकी आवाज़ का इंतज़ार हो, कोई पुराना दोस्त, कोई अधूरी मोहब्बत या फिर खुद आपका वो हिस्सा जिसे आपने भागती हुई ज़िंदगी में कहीं पीछे छोड़ दिया। तो आज अंदाज़े बयां पर दिल से एक आवाज़ दीजिए, क्या पता कोई जवाब अब भी बाकी हो। मैं हूँ उर्वशी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो और शो शुरू हो चुका है अंदाज़े बयां, जिसमें बहुत ही खूबसूरत आपकी पसंद की गज़लें, नज़में, वो सब मैं लेके आती हूँ आपके लिए। कुछ शेर और शायरी की मैं थोड़ी सी आशिक हूँ तो आपके लिए वो ढूंढ ढूंढ के लाने की कोशिश भी करती हूँ, तो वो भी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको भी कुछ सुनना है आपका मनपसंद तो मुझे बताइए। अभी तो बहुत ही खूबसूरत सा एक गाना आपके लिए इस शो अंदाज़े बयां में।

मोहब्बत सोज भी है साज भी, मोहब्बत सोज भी है साज भी, खामोशी भी है ये आवाज़ भी है। अर्श मलसियानी का ये बहुत ही खूबसूरत सा शेर मोहब्बत। और मोहब्बत सिर्फ महसूस करने की चीज़ नहीं होती, ये जीने का एक अंदाज़ भी है। कभी ये दिल में धीमे धीमे जलती हुई लौ बन जाती है, तो कभी किसी गीत की तरह रूह में उतर जाती है। कभी कुछ कहे बिना सब बयां कर देती है, और कभी एक आवाज़ पूरी दुनिया बदल देती है। ये शेर मोहब्बत के उसी रंग को छूता है ना, जहाँ दर्द भी है, सुकून भी है और खामोशी भी है, और कोई अनकही सी धुन भी है। तो इस खूबसूरत शाम में अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, जो शायद बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही है। मैं हूँ उर्वशी और आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां FM रेनबो पर।

कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है, जैसे किसी थके हुए दिन में अचानक सुकून उतर आए या किसी अंधेरी शाम में हल्की सी रोशनी जगमगा उठे। खुदा की उस गले में अजीब कुदरत है, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी हो जाती है। बशीर बद्र साहब का ये बहुत ही खूबसूरत शेर उन लोगों के नाम जिनकी बातें, जिनकी आवाज़ दिल पर असर छोड़ जाती है, और शायद इसीलिए कभी कभी हम किसी की आवाज़ सुनने के लिए ही उनके करीब रहना चाहते हैं। उनकी बातें सुन के अच्छा लगता है ना? आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिसकी बातें सुन के आपको अच्छा लगता होगा, तो शायद आज उसे याद करते करते ये और गज़ल सुननी है अंदाज़े बयां में।

अंदाज़े बयां का हमारा सफ़र बस यही ख़त्म होता है, लेकिन मैं यही हूँ स्टूडियो में आपके साथ, आपके साथ ही बनी हुई हूँ मैं। ठीक 7 बजे आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे और उसके बाद मैं आपको मिलूँगी आपके मनपसंद हम तुम में, जिसमें आपकी ही फरमाइश के गाने मैं आपको सुनाऊँगी। आपको पता ही है आपको क्या करना है, 8657661071 पर आपको हमें व्हाट्सअप करने हैं आपकी पसंद के गाने। ऑलरेडी बहुत सारे गाने आ चुके हैं, शो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों ने अपने रिक्वेस्ट हमें भेज दी है। सो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि आप लोग इतना मतलब प्यार देते हैं, इतने सारे गाने आप हमको भेजते हैं। सो थैंक यू सो मच। और तो क्या अंदाज़े बयां में आज बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत ही मेरी पसंदीदा गज़लें मैंने आपको सुनाई, बहुत पसंदीदा शेर मैंने आपको सुनाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी कोई पसंद की चीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए मेरी पसंद के बाद अब वक्त हो चला है आपकी पसंद के गानों का, तो डेफिनेटली मुझे भेजिए और सुनते रहिए FM रेनबो 89.4।

प्रादेशिक समाचार के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूं मैं उर्वशी। हम तुम की शुरुआत अब होने वाली है, तो देखिए हम तुम में आपको पता ही है कि आप जितनी फरमाइश करते हैं वो सारी तो पूरी करना मेरे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मुश्किल से 40 मिनट मिलते हैं और उसमें आप सभी के गाने बजाना आप जानते हैं कितना मुश्किल काम है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट आप सभी के नाम मैं मेंशन कर पाऊँ, जो जो लोग हमको सुन रहे हैं उनके नाम लेकर एटलीस्ट उनको ऐसा ना लगे कि उनको मैंने नोटिस नहीं किया या उनका मैसेज भी मैंने नहीं पढ़ा, तो ऐसा मैं नहीं करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अभी बहुत सारे लोग जुड़े हैं और जिन गानों से मैं ये हम तुम की शुरुआत करने वाली हूँ वो है दो गाने, एक दत्ता केदार जी

की फरमाइश थी पड़ा जीना तेरे बिन परदेशी बाबू का ये सॉन्ग। और दूसरा गीत जो मैं सुनाने वाली हूँ वो है विजेंद्र घटोल जी की फरमाइश पे बैंड बाजा बारात फिल्म का गाना एवे एवे लुट गया। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके नाम भी मैं ले ही लेती हूँ। पदमपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। आपकी फरमाइश मेरे दिमाग में है, अगर ये गाना वक्त ने अलाउ किया तो डेफिनेटली मैं बजाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है आपकी पसंद का। संजय दर्शन हमारे साथ है, वो हमारे साथ कब से ही जुड़े हुए हैं। और प्रमोद चिंचोलकर हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर्स जो हमको हमेशा सुनते हैं। अरविंद कुलकर्णी जी वो भी हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर और बहुत सारे लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दो गानों से और फिर आपकी पसंद के कुछ और गानों के साथ मैं आपको मिलूंगी इन द शो हम तुम।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। आकाशवाणी एफएम रेनबो।
1: अभी आपने सुना फिरोज सिगनपुरिया जी की फरमाइश पे जुर्म फिल्म का गाना, और उन्होंने मैसेज किया था कि उनका नाम लेना मैं भूल ही गई नहीं भूली थी सर, आपका नाम लेना मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपका नाम तो रोज़ जब भी शो करने आते हैं तब सामने आ ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फरमाइश नहीं ले पाते हम लोग, लेकिन आप तो रेगुलर लिसनर्स हैं, जितने भी रेगुलर लिसनर हैं जो रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं उनके तो नाम हम कैसे ही भूल सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, तो चलिए उनके नाम लेते हैं और कुछ कुछ फरमाइशें भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। ज्योति घटोल हमारे साथ है, वो कहती है हम प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं और गाने भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज़ मेरा नाम शामिल कीजिएगा। जी जी ज्योति जी, डेफिनेटली आपका नाम तो हमने डेफिनेटली शामिल कर ही लिया। मुकेश कश्यप जी हमें सुन रहे हैं, उनके साथ शीतल, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, ये सब भी हमें सुन रहे हैं, और राकेश माथुर जी भी हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ एक्चुअली आज, तो वैदेही हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो बोल रही है कि मैं 5 बजे से आपका शो सुन रही हूँ, और उनकी फरमाइश का गाना भी है, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि आपकी फरमाइश का गाना मैं बजा सकूँ। इब्राहिम जी ने जब कोई बात बिगड़ जाए गाना मैंने प्ले किया था फिरोज़ जी की फरमाइश पे, तो उस गाने पे उन्होंने बहुत ही अच्छे रिएक्शंस दिए हैं। गोपे जी हमको सुन रहे हैं, शिवा गो, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि, दीपाली और बहुत सारे लोग हमको सुन रहे हैं, लेकिन अभी दो फरमाइश के

गाने मैं आपको सुनाने वाली हूँ, एक जो हमको दी है हरि अन्ना जी ने, उनकी फरमाइश थी जब वी मेट फिल्म्स का जो गाना है आओ मिलो चले, और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी अजय सखारे जी की फरमाइश पे सांवरिया फिल्म का गाना जब से तेरे नैना। तो चलिए इन सभी की फरमाइश सुनते हैं, और आप भी अपने गानों की पसंद मुझे भेजते तो रहिए।

0: सा खफा भी हो जाती है. लेकिन ये आपका हक है भाई, आप हमको इतना सुनते हैं. आप मतलब बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं अभी मेरे साथ ही जो 5 बजे से लगातार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं. तो अगर उनका गाना मैं शामिल ना कर पाऊँ तो थोड़ा सा रूठना तो बनता है. लेकिन आप तो रेगुलर सुनते हैं ना, आपको पता ही है कि 40 मिनट्स होते हैं हमारे पास हम तुम में आप सभी की फरमाइश को लेने के लिए मेरे पास, लेकिन कभी कभी नहीं ले पाते हैं. लेकिन कोई बात नहीं, चलिए कुछ नाम ही ले लेते हैं. हितेंद्र दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज महोड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश शिंदे जी जो बहुत ही रेगुलर लिसनर हमारे, जब भी मैं शो करने आती हूँ तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा हमारे साथ होते ही हैं. कल्पना राजू जी हमें सुन रही है, इब्राहिम जी मुझे कह रहे हैं कि हमेशा खुश रहिए. थैंक यू सो मच इब्राहिम जी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. प्रवीण जी हमारे साथ, हमारे साथ श्रद्धा मंत्री जी, अब्दुल्ला, राकेश माथुर, संजय दर्शन, अजय सखारे इंदौर से, वो भी हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कब से. और इसके बाद मैं जो गाना बजाने वाली हूँ वो पंकज महोड़ जी की फरमाइश पे देवदास फिल्म का सिलसिला, मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये गाना स्पेशली उनके लिए प्ले करने वाली हूँ. तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऑन FM रेनबो.
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट.

FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं हम तुम, और अब तो मैं कह सकती हूँ कि क्या बोलते हैं, आप सुन रहे थे, क्योंकि बस अब कुछ ही गानों का वक्त रह गया है मेरे पास और मेरे जाने का तो वक्त हो ही चुका है। थोड़ी ही देर में मैं आपसे विदा लूँगी हम तुम में, और देखते हैं कि कब आपसे मिलने का मौका मिलता है मुझे दोबारा। बहुत सारे लोग और उनके बहुत ही कहते हैं ना पसंदीदा गानों के रिक्वेस्ट ऑल रेडी आने लगी है। फिरोज जी का गाना हमने सुना, प्रकाश शिंदे जी, पंकज मोहर जी, चेतन कुमार जी और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं रादर। और एक जो गाना मैं अभी बजाने वाली हूँ जो है शमिता फिल्म का गाना पिघली सी बातें, और दूसरा जो भी गाने हैं अब्दुल्ला कह रहे हैं मैम मैं आपके साथ ही हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। आप लोग जो हमारे साथ रहते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि यू नो आप लोग हैं जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, तो थैंक यू सो मच। अब जब भी मुलाकात होगी तो डेफिनेटली जिन जिन की फरमाइश रह गई है उनको सुनाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए, वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने

0: और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत यह परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मधुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजी नगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
2: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
3: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है।

0: ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई है।
2: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और उसमें यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
1: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों का सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
3: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबूधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीज का एमएसएमई

0: ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि यह अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। सम्मेलन में करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। निदेशालय ने करीब 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास निगरानी कर रही थी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

याद ने चुपके से दिल में दस्तक दी है। कोई लम्हा, कोई आवाज़, कोई वादा जो रात के सन्नाटे में जिंदा हो जाता हो। रातें बोलती हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो खामोशी सुनना जानते हैं। बहरहाल इस चुप्पी भरी रात को एक गजल की नरमा आँच में सजाते हैं और ये कलाम आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं खुर्शीद।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जैसा आप आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM के लहरों पर, इस वक्त खुर्शीद आपके साथ है और प्रोग्राम रंगे महफिल। जिंदगी रंगों से बनी है और कुछ देखे हुए और कुछ महसूस किए हुए और कुछ अनकहे जज्बात जो दिल में छुपे होते हैं। रंग सिर्फ गुलाल नहीं है बल्कि वो एहसास है जो हर रिश्ते, हर लम्हे और हर ख्वाब को एक पहचान देते हैं। मोहब्बत का रंग लाल, तन्हाई का स्याह, उम्मीद का पीला और यादों का फीका नीला। और हर दिल का अपना रंग होता है जो वक्त के साथ बदलता नहीं है बल्कि गहराता चला जाता है। बशीर बद साहब ने इस जज्बाती रंग को खूबसूरती से बयां किया है। कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और जिसमें उजाला सिर्फ रोशनी नहीं है बल्कि बीते हुए लम्हों की गर्माहट का एहसास है। कभी मोहब्बत का रंग चढ़ता है और कभी बिछड़ने का रंग उतर जाता है। बहरहाल दोनों दिल के कैनवस पर अमिट रह जाते हैं। तो चलिए आज दिल के इसी रंगीन कैनवस पर एक रंगीन मगर गमगीन, या कहें कि थोड़ा सा दिल को छू जाने वाला कलाम आप तक पेश कर रहा हूँ। बेहद खूबसूरत है मखमली आवाज़ के सरताज जगजीत साहब की आवाज़ में।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

जिंदगी में कुछ चीजें हम चुनते हैं और कुछ चीजें हमें खुद चुन लेती हैं। हालात वो मेहमान हैं जो बिना दस्तक के एक दिन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। कभी वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और कभी हालात के साथ हम खुद को बदल लेते हैं। और किसी के लिए हालात इम्तहान बनते हैं और किसी के लिए तामीर का रास्ता। पर जो हालात से नहीं डरता वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। जब लफ्ज़ मुंह फेर लेते हैं तो शायर खामोशी से बोलता है। जैसे निज़ाम फाज़ली ने साहब ने कहा था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखिएगा कई बार देखना। हर हालात में हम अलग हो जाते हैं, कभी खुद से अनजान हो जाते हैं, कभी मजबूत हो जाते हैं और कभी टूटकर भी मुस्कराने लगते हैं। आज हम इन उलझे हुए हालातों को एक सुर आवाज़ और एहसास दे रहे हैं इन कलाम के साथ। आइए सुनते हैं।

रंगे महफिल 102.6 FM की लहरों पर सवार हैं आप और मैं हूं खुर्शीद। कुछ लम्हे होते हैं जो हम जीते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें जी लेते हैं। वो अचानक आई मुस्कान या फिर कहें कि चुपचाप गिरा हुआ आंसू और एक शख्स के साथ बिताई छांव और उसके जाने के बाद फैली धूप, ये लम्हे घड़ी में बंधते नहीं हैं बल्कि दिल की तरह तह में छिप जाते हैं कहीं पर। पुराने खतों की महक या अधूरे ख्वाब के रंग। गुलजार साहब ने कहा है कि लम्हों ने खता की थी, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इस नाजुक एहसास को बयां करती है कि एक पल की भूल कैसे उम्र भर की तन्हाई बन जाती है। और शायद यही जिंदगी है हमारी, जहां एक पल सब कुछ जिंदगी दे भी देती है और एक पल में जिंदगी उस चीज को छीन भी लेती है। बहरहाल अगला कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं, इसे बड़ी संभाल कर रखिएगा, बहुत खूबसूरत है।

कहते हैं वक्त कभी रुकता नहीं है, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी पुराने लम्हे में वक्त जो है वो ठहर गया है। ये वक्त जो ना दिखाई देता है ना छू सकता है कोई, लेकिन हर रिश्ता, हर एहसास, हर कहानी में मौजूद होता है। कभी मरहम बनकर और कभी जख्म बनकर, और कभी हमें आगे बढ़ा देता है तो कभी बीते कल में हमें लौटा भी देता है। शायरों ने भी इसे गहराई से महसूस किया है। वक्त अच्छा भी आएगा फराज, वक्त अच्छा भी आएगा फराज, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। जैसे फराज की ये अशार जो है उम्मीद की रोशनी बिखेरते हैं ना। वाकई जब बुरा वक्त होता है तो लगता है कि कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं बीतेगा, और जब अच्छा होता है तो चुपचाप निकल जाता है, सिर्फ यादें छोड़ जाता है। आइए इस वक्त के जादू को मौसीकी के जादू में जोड़ते हैं, और पेश है ये अगला कलाम। बेहद खूबसूरत है, और जिंदगी कहें कि जिंदगी में जब हम वक्त का एहतराम करते हैं ना, तो फिर वक्त भी हमारा एहतराम करने लगता है।

साहब, वक्त जो है वो बड़े इतरा के चल रहा है, क्योंकि वक्त कह रहा है कि अब आपसे इजाज़त मुझे लेनी होगी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल गज़ल के प्रोग्राम रंगी महफिल से मुझे खुर्शीद को यही इजाज़त दीजिए, और अपना ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। खुदा हाफिज़।

नमस्कार, एफएम रेनबो से प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी VBG रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की। कामों की संख्या में करीब 41% की बढ़ोतरी हुई। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। आयोग ने कहा किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने का समय नहीं मांगा था। असम में BJP ने सिलचर नगर निगम चुनाव में बहुमत हासिल किया है। 40 वार्डों में 30 वार्डों में जीत दर्ज की। राजस्व खुफिया निदेशालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़ी कार्रवाई। करीब 12 करोड़ की कीमत का लगभग 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद। बेल्जियम में जन्मे

वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजिन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनों की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और भारत ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

FM Rainbow 102.6 पर रात के इस खूबसूरत पहर मैं हूँ योर्स वेरी ओन दीप्ति पाठक अपने लवली लिसनर्स के लिए लेकर हाजिर हूँ जीरो आर शो, जहाँ आज की रात होगी कुछ खास, कुछ बेहद चुनिंदा नगमों के नाम, कुछ ऐसी धुनें जिनके साथ मन भी गुनगुना उठे। तो आइए शुरू करते हैं आज की रात का ये सुरीला सफर FM Rainbow के संग।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

धन्यवाद दीप्ति एक खूबसूरत शो के लिए, और बड़ा ही खूबसूरत शो रहा, यही कहना चाहूँगा जीरो और आपके जरिए। और आकाशवाणी रेनबो 102.6 102.6 पर अब आप जुड़ चुके हैं सुहानी रात के साथ। एक बज चुका है, प्रोग्राम का समय भी हो चुका है, लेकिन उससे पहले हमें एक और परंपरा का निर्वहन करना है, और वो है हिंदी में समाचार बुलेटिन, अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस जिन्हें कहना चाहिए। आइए लेते हैं एक जानकारी अब तक के मुख्य समाचारों से। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी बीवीजी रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। कामों की संख्या में करीब 41% की बढ़ोतरी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। आयोग ने कहा किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने का समय नहीं मांगा था। असम में बीजेपी ने सिलचर नगर निगम चुनाव में बहुमत हासिल किया है। 40 वार्डों में से 30 वार्डों में उसने जीत दर्ज की है। सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की। राजस्व खुफिया निदेशालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़ी कार्रवाई, करीब 12 करोड़ की कीमत का लगभग 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद। और भारत ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और जैसा कि हमने वादा किया था कि इसके ठीक बाद आप जुड़ेंगे कार्यक्रम सुहानी रात में मेरे यानी रजत के साथ, तो हम अपना वादा पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं हुजूर, और बस आप भी मुस्तैद हो जाइए खूबसूरत 90s के दिल अजीज गानों की सौगात के लिए। इसके अलावा 102.6 के अलावा आप हमारे साथ उपलब्ध हैं, हम आपके साथ उपलब्ध हैं, ये कार्यक्रम आपके साथ उपलब्ध है न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। तो मेरा बहुत बहुत अभिवादन स्वीकार।

है, नमस्कार स्वीकार है और आने वाले दिन के लिए शुभकामनाएं स्वीकार है। इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए अपनी स्वागत को स्वीकार है। मेरे जरिए आप जुड़े हमारे साथ, प्रोग्राम है सुहानी रात।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: now and watch for free.
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

कुछ हो सकता है या नहीं, लेकिन वक्त का दस्तूर जरूर ये कहता है कि हमें एक समय के बाद नमस्कार कहना होता है और दूसरे समय के बाद विदा लेनी होती है। फिलहाल शो का ही विराम देने का समय आ गया है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।

नमस्कार, रात्रि के 2 बजे हैं। FM रेनबो से प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी VBG रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। कामों की संख्या में करीब 41% की बढ़ोतरी हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। आकाशवाणी परिसर में कई घंटे धरने पर भी बैठे। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण दिया, कहा किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने का समय नहीं मांगा था। असम में BJP ने सिलचर नगर निगम चुनाव में बहुमत हासिल किया है। 40 वार्डों में से 30 वार्डों में जीत दर्ज की। CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजवीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में FIR दर्ज की। राजस्व खुफिया निदेशालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़ी कार्रवाई। करीब 12 करोड़ की कीमत का लगभग 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद। और भारत ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

FM Rainbow 102.6 पर एक बार फिर आपके साथ हूँ मैं, योर्स वेरी ओन दीप्ति, और हम हाजिर हैं लेकर वो नगमे जो भुलाए ना बने हैं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

खूबसूरत और संजीदा गानों से सजा एक और शो आप तक पहुंचा, भुलाना बने में दीप्ति के रास्ते। अब 3 बज चुके हैं और नया प्रोग्राम फिर आने वाला है मिडनाइट मेलोडीज के नाम से, लेकिन उससे पहले अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के लिए स्वीकृत की गई है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी VBG रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। इन कामों की संख्या में करीब 41% की बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। आकाशवाणी परिसर में कई घंटे ये सभी लोग धरने पर भी बैठे। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण दिया, कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने का समय नहीं मांगा था। असम में बीजेपी ने सिलचर नगर निगम चुनाव में बहुमत हासिल किया है और 40 वार्डों में से 30 वार्डों में जीत दर्ज की है। CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी राजबीर घुमन और उनके साथियों के खिलाफ तबादले और तैनाती में कथित तौर पर पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में FIR दर्ज की है। राजस्व खुफिया निदेशालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़ी कार्रवाई, करीब 12 करोड़ की कीमत का लगभग 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद, और भारत ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए। आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर हैं इस वक्त आप और 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमसे जुड़े हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए भी। देश और दुनिया के हर कोने हर हिस्से से जुड़ने के लिए अगर ये ऐप आपके पास नहीं है तो आज ही डाल लीजिए। स्वागत है आपका कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज में, मेरे यानी रजत के साथ। खूबसूरत गानों की झड़ी एक बार फिर आपका इंतजार करिए बस कुछ ही पलों में।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

नमस्कार, एफएम रेनबो से प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.1% किया।

सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की। कामों की संख्या में करीब 41% की बढ़ोतरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेताओं ने कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आकाशवाणी परिसर में कई घंटे धरने पर भी बैठे। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर निर्वाचन आयोग का स्पष्टीकरण, कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने का समय नहीं मांगा। राजस्व खुफिया निदेशालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करीब 12 करोड़ की कीमत का लगभग 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना जब्त। बेल्जियम के में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के में तेज बारिश का अनुमान जताया। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चलने की संभावना। और भारत ने 5 मैचों में की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

एक बार फिर स्वागत कर रही हूँ मैं दीप्ति आपका एफएम रेनबो 102.6 पर। चलिए गुनगुनाते हैं जीवन की सरगम को सारे गामा में।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी ची नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।